मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। सक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की तिथि 12वीं तदनुसार 2 जून 2026 ईस्वी प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ

0: UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, located in Chamoli district, has been open to tourists. Forest Department has appealed to visitors to cooperate in the conservation of the valley's rich biodiversity and rare plant species. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये भक्ति संगीत आप सुन रहे थे लखबीर सिंह लखा और साथियों की आवाज़ में। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं ये भक्ति गीत।

0: जीव की गति और नियति, यशपाल सिंह राठौड़ से।
1: प्रत्येक कार्य, कर्म, व्यवहार, संकल्प, विकल्प, प्रत्यक्षदर्शी और साक्षी ईश्वर स्वयं होता है। परमात्मा का अपने अंश, जीवात्मा की देखभाल उसका निधि दायित्व है। जीव के लिए यह संसार विविधताओं का विराट संकलन है। जैसे तेज सूर्य का, अमृत चंद्रमा का, ज्ञान ब्रह्मा जी का, शक्ति शिव की, आदर्श श्री राम का, योग वैराग्य श्री कृष्ण का, नीति नियम विदुर जी के, त्याग महर्षि दधीचि का, भक्ति हनुमान जी की, प्रीति शबरी की, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह की क्षमा, दया, अहिंसा आदि जीवात्मा के लिए है। संसार में विविधताओं का सृजन उसका करिश्मा परमात्मा सत्यचित आनंद भी है, और उसने जीव को सत्यम शिवम सुंदरम बनाकर एकाकार करना चाहा है। उपनिषद में जिक्र आता है, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा संख्या 125 में उल्लेख आता है, नरतन सम नहीं कब निज देही। किंतु बड़ी विडंबना है कि जीव मिथ्या अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, मोह माया में निबद्ध होते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगता है। कथनी करनी रहनी की एक रूपता समाप्त हो जाती है। फलतः है जीव को अपने दुर्गुणों पर पर्दा डालने के लिए आए दिन झूठ, फरेब और दाव पेंच का ताना बाना बुनना पड़ता है। वह अपने को एको हम द्वितीय नास्ति मानकर दैहिक दैविक मानसिक वेदनाओं से ग्रस्त हो जाता है। ईश्वर द्वारा जीव को चेतावनी दी जा चुकी है, निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। कालक्रम में जीव माता पिता, परिवार और समाज से प्रदत्त सुविधाओं दायित्वों को अधिकार समझ लेता है, और यही जीव और ब्रह्म के बीच दूरियां बढ़ाने का कारण बनता है। जबकि जीव और ब्रह्म के बीच अन्योन्याश्रय संबंध अटूट है, और ये संबंध अन्य कितने ही रूपों में अभिव्यक्त है। ऐसा संबंध स्थापित करते ही जीव के मानसिक आत्मिक दोनों बल संतुलित हो जाते हैं। द्वापर युग के महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारथी बनाकर उसे प्रमाणित भी कर दिया। संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप में प्रार्थना की, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। वस्तुतः हमारे उच्च विचार ही संसार को सुंदर बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे मन में होता है। अत्यधिक ज्ञान हेतु अपराज्ञान से ऊपर पराविद्या की आवश्यकता होती है। इस विद्या द्वारा जीव, जीवात्मा, परमात्मा सहित संबंधों का ज्ञान आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्राप्त होता है, और ये ज्ञान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बीच का एक सुसंस्कृत और संकलित अध्ययन है।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, यशपाल सिंह राठौड़ से, जीव की गति और नियति पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 होने वाले हैं। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का, लेकिन उससे पहले एक अंतराल।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतिहारा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा असली नकली खाद की पहचान। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 262। सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे दान की महिमा, नर सेवा, नारायण सेवा, नारी शिक्षा का महत्व। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हिंदी काव्य पाठ कवि प्रवीण राजपाल से। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कुछ भजन कार्यक्रम सुगम संगीत में। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, कलाकार होंगे सुलोचना खमीर। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। दिन के 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक इंसान। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ गजलें दोपहर 12:30 पर। दोपहर 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय होगा मिट्टी पानी का पीएच मान कैसे परख करें।

दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे जरूरी जानकारी, सड़क सुरक्षा, लू लगने के लक्षण व बचाव, कपड़ों को दें नया लुक, सेहत में फायदेमंद गोंद कतीरा। प्रस्तुत करता हूँ किरण शर्मा। शाम 5 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, जीवन में अध्यात्म का महत्व, ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे और नुकसान, नशा जीवन का नाश और आज का इतिहास। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराई की। चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लू से बचाव, वृक्षारोपण धरती का श्रृंगार, पशुधन को तापघात से बचाएं, इसके अलावा बाजार भाव और मौसम की जानकारी। रात्रि 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। गौरबंद कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 9:15। रात्रि 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपनों राजस्थान। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी।

0: साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा।

0: फिर से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। जानकारी का विषय है असली नकली खाद की पहचान।
1: राम राम रामेश्वर भाई, राम राम।
2: राम राम मुकेश भाई, राम राम, राम राम। और सुनाओ मुकेश भाई, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया रामेश्वर भाई, बस लाग रहे हैं खेत क्यार के काम धंधे में।
2: बढ़िया बढ़िया। और अब देखा नहीं तो अब मौसम जो है वो बदलने ला रहे है, और आपने हाड़ी जी की फसल है ना, आपने जो का भाई लोग है बे लगभग सामने में लाग रहे है।
1: जी बिल्कुल रामेश्वर भाई, अब आप देखने ला रहे हैं कि लगभग किसान भाई हैं जका आपकी फसलें जकी साम ली है, आगे की फसल की बीज आंत जकी बिंगी तैयारी भी शुरू कर दी है।
2: क्योंकि अब देखा नहीं तो आपने जगह कणगीज की फसल है बा लगभग कटाई हो चुकी है, लेकिन तूड़ी ताड़ी वालों तो काम धंधो नहीं मुकेश भाई, अजय की थोड़ो बहुत बाकी पड़ियो है।
1: बिल्कुल रामेश्वर भाई, और वो काम धंधो तो देखो जी यही चाल तो ही रहनो है।
2: हाँ,
1: और
2: हाँ।
1: सागे सागे रामेश्वर भाई थारकनु कई जानकारी लेनी थे, मार में श्याणा मीने खो सोचे हो जानकारी थारू ही ले लिया।
2: मुकेश भाई श्याणा तो थे भी हो, लेकिन जानकारी की अगर बात पूछनी है ते पूछ सको, और पूछो के पूछना चाहो।
1: रामेश्वर भाई सहसू पहला तो मैं थारसू आ बात पूछना चाहूँ कि जी आप खेती करा तो भी मैं खाद को उपयोग करा,
2: बिल्कुल।
1: और खाद के उपयोग का माँ अब अपने बेरो कौन लागे नहीं कि किसी खाद असली है और किसी नकली है। तो वो आन दिना में की चर्चा में रेवे कि आ खाद तो भाई तू नकली लिया हो या तेरी असली खाद है, तो बिंगी पिछाण किया करा।
2: मुकेश भाई का अब लाला दिना भी आप एज की शिकायत है और एज की कमियां है, आप सुनी और देखी भी आपने जो किसान भाई लोग है बता ला रहे का नकली खाद जी की है बाण ला रही है,
1: जी
2: तो इंग जी की पिछाण है नी बा अपन करनी जरूरी है, तो इंग पिछाण आपा किया करनी है जी आप डीएपी जी की है बा खेत का बरताइया।
1: हाँ बिल्कुल, डीएपी आप लगभग फसल में उपयोग में लेवाइया।
2: मुकेश भाई जे डीएपी की आप पिछाण करनी है नी भी असली है नकली है, तो इंग लिए सहसु पहली आप जो तरीको अपनाना वो ये है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना भी हाथ में लेगे और बामा चुन्नो जो को है वो मिला गे और बिने मसलनो चाहिए हथेड़ी के ऊपर, बिंग मजे तेज गंध आ ला जाए सोर मान ला जाए और आप बिन सूंगे देखा तो यह समझाना चाहिए का आ डीएपी जिकी है बा एकदम असली है।
1: यानी कहना मतलब है कि जे सूंघणो ही मुश्किल हो जावे इतनी तेज गिंद आवे बीमा तो बा इंगो मतलब असली है।
2: हाँ बिल्कुल असली है, आ एक पिछाण है। और इंगे अलावा एक और पिछाण है मुकेश भाई।
1: के पिछाण है भाई बता दियो।
2: बा पिछाण आ है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना है बे धीमी आंच पर अपने तवा के ऊपर गर्म करना है, जो को रोटी पोन वाला तवा है
1: जी
2: बिंग ऊपर आप गर्म कर लेवा, जे ये दाना फूल जे तो समझानो चाहिए है कि आ डीएपी जिकी है असली है।
1: असली है।
2: हाँ
1: और इंगे अलावा और कोई पिछाण है तो बा भी बता दे रामेश्वर भाई।
2: बिल्कुल एक और पिछाण है बा भी सुन लो थे, डीएपी की जिकी असली पिछाण है नी बा आ भी है मुकेश भाई के इंगा जका कठोर दाना भूरे काले और बदामी रंगा हुए और नाखून शू बे आसानी से टूटे को नहीं, आपा बिन मसल गए या तोड़ के देखा तो।
1: ठीक है, तो यूं आपा पिछाण सका कि आ डीएपी असली है और नकली है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इंगे अलावा रामेश्वर भाई आपा पोटास को उपयोग करा फसल में,
2: बिल्कुल करा
1: तो इंगो और बता दियो माने कि इंगो माने किया बेरो लगे कि नकली पोटास है या वो असली पोटास है।
2: इन चीज की भी पिछाण आप कर सका जी पोटास की जी असली पहचान है वो इंगो सफेद जो को कड़ाको है वो आप मान सका। इंगे अलावा मुकेश भाई आपने एक और पिछाण है का असली पोटास की जिकी पिछाण है बकियां कर सका, पोटास पानी में घुलने पर इंगो जो को लाल भाग है वो हमेशा ऊपर लपा से तैरतो रहे।
1: ठीक है रामेश्वर भाई, इंगे अलावा आप बात करा सुपर फास्फेट की, तो सुपर फास्फेट की असली नकली की पिछाण आप किया करा।
2: सुपर फास्फेट की भी असली नकली की पिछाण मुकेश भाई कर सका, सुपर फास्फेट की असली पहचान आ है कि इंगा सख्त दाना जका है अंगो जो को रंग है वो भूरो काड़ो और बदामी रंग हुए।
1: ठीक है,
2: और इंगे अलावा सुपर फास्फेट का कुछ एक दाना तवा पर गर्म करने पर जे ए दाना ना फूले तो समझानो चाहिए का आ असली सुपर फास्फेट है।
1: असली सुपर फास्फेट। रामेश्वर भाई इंग मा एक पिछाण आ है कि इमे ज्यादातर जको है वो डीएपी और एनपीके को मिश्रण बिंगी मिलावट हो है।
2: हाँ हाँ,
1: इंगो आपा पिछाण करके हैरापा असली नकली की पिछाण कर सका।
2: बिल्कुल, आप एक बहुत बढ़िया पिछाण है, और इन त्रियांशो आप अगर आपने जो असली नकली खाद है पिछाण करके यार खेत में ना खानी तो आपने जो फसल है बा भी मुकेश भाई बहुत बढ़िया है, और आपने जो को पीसो टक्को लागू है नी वो बेड़ो कौन जे नी।
1: बिल्कुल सही बात है रामेश्वर भाई,
2: पर अब तो खेत का काम धंधा मैं और थे और भी करना है, तो क्यों ना चला।
1: चलो सर,
2: राम राम, राम राम सा, राम राम।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। जानकारी का विषय था असली और नकली खाद की पहचान। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये लोक भजन।

आप सुन रहे थे लोक भजन। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 262।

श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड के अंतिम चरण में राम कथा का वो प्रसंग आता है जहां श्री राम और लक्ष्मण पंपा नामक सुंदर सरोवर के तीर पर पहुंचते हैं। गहरे सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं जिन पर मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुलों तथा जल निवासी पक्षियों का समूह देखते ही बनता है। इसी सरोवर के आसपास मुनियों के आश्रम हैं, जहां अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं ने अद्भुत सुषमा बिखेर रखी है। श्री राम तथा लक्ष्मण ने सरोवर के शीतल जल में स्नान किया और एक घने वृक्ष की छाया में दोनों भाई बैठ गए। वहां देवता तथा मुनियों ने उनकी स्तुति की। सीता हरण के कारण श्री राम के हृदय में विरह वेदना व्याप्त है, ऐसा सोचकर महर्षि नारद के मन में ये विचार उठा कि उन्हीं के शाप को स्वीकार करके श्री राम अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं। इसी विचार में मग्न नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 262। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं दान की महिमा की। दान मानव जीवन का सबसे पवित्र और पुनीत कर्म है। हिंदू धर्म में दान को पुण्य कर्म माना गया है, जिसका फल मनुष्य को अगले जन्म में प्राप्त होता है। धर्म के चार चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। इनमें से दान कलयुग में प्रधान है। किसी भी प्रकार से दिया गया दान कल्याण ही करता है। वेद, महाभारत और पुराणों के अनुसार श्रद्धा, लज्जा या भय से किया गया दान भी फलदायी होता है। हमारे बुजुर्ग हमें कहा करते थे, अगर दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी खबर ना लगे। लेकिन आजकल लोग दान देते हैं सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए। दान देते समय या तो फोटो खींच लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि हम दान इसलिए देते हैं ताकि हमारा मन शांत हो सके, ना कि इसलिए कि हमें और अहंकार हो जाए। इसलिए अहंकार से बचें, मन की शांति के लिए दान करें।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गोलमाल से। संगीत था आर डी बर्मन का, गीत के बोल थे गुलजार के। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं हिंदी काव्य पाठ कवि प्रवीण राजपाल से।
1: संजय खेलने ही जा रहा था कि उसकी माँ ने आवाज दी, संजय इधर आना तो बेटे। संजय चिड़चिड़े मन से माँ की ओर देखने लगा। उसके साथी उसके माँ की मुख मुद्रा देखकर बोले, जा ना यार, नहीं तो हम सब की शामत आ जाएगी। मैदान पर पैर पटकते हुए संजय ने साथियों से कहा, अभी आता हूँ, देखूँ मेरे बिना कौन सा काम अटक गया है। कभी भी मुझे ढंग से खेलने नहीं देते, जब देखो काम ही काम। अपनी माँ के पास पहुंचकर झुंझलाए स्वर में संजय बोला, माँ खेलते समय क्यों बुलाती हो आप, सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। झोला संजय के हाथ में थमाते हुए माँ स्नेह से बोली, बेटा घर में आलू प्याज नहीं है, नजदीक की दुकान से ले आ, एक एक किलो ले आना। 50 रुपये का नोट जब जेब में डालकर संजय जबरन चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए बोला, माँ 5 रुपये की एक चॉकलेट खरीद लूँ ना। जा रे, तंग मत कर, तेरी यही आदत मुझे पसंद नहीं है, हर बार चॉकलेट के बहाने 5 रुपये काट लेता है। यह कहकर माँ रसोई घर में चली गई। दुकान के आगे साइकिल को स्टैंड पर खड़ी कर संजय झोला लिए हुए दुकान के अंदर घुसा। उस समय वहाँ कोई नहीं था। दुकानदार संजय को देखते ही बोला, बाबू 2 मिनट प्रतीक्षा करो, मैं अंदर से प्याज की बोरी निकाल कर लाता हूँ। दुकानदार के अंदर जाते ही संजय ने चौकन्नी निगाह से चारों तरफ देखा और 2 आम पेंट की जेब में डाल लिए। संजय मन ही मन इस हरकत पर बड़ा खुश हुआ। इतने में दुकानदार प्याज की बोरी ले आया और पूछने लगा, बेटा क्या चाहिए? 1 किलो प्याज व 1 किलो आलू। जैसे ही दुकानदार आलू तोलने लगा, उसका लड़का आकर बोला, बापू जाइए आप खाना खा लीजिए। ठीक है राजू, इस लड़के को 1-1 किलो आलू प्याज दे देना। ये कहकर दुकानदार अंदर चला गया। लड़का दूसरे ग्राहकों को भी निपटाने लगा। आलू प्याज लेकर संजय ने 50 रुपये का नोट लड़के की ओर बढ़ा दिया। उसी समय 3 और ग्राहकों ने भी पैसे दिए, जिनमें से 2 ने 100-100 रुपये के नोट व 1 ग्राहक ने 50 का नोट दिया। गल्ला खोलकर 1 50 का नोट व 2 10-10 के नोट निकालकर उस लड़के ने संजय को दिए और कहा, 15 रुपये के प्याज और 15 रुपये के आलू, बाकी 70 रुपये रखो। संजय ने उन नोटों को जेब के हवाले करके आश्चर्य की ओर स्थिति में कुछ देर तक खड़ा रहा। फिर वह झोला लिए साइकिल की ओर बढ़ने लगा। साइकिल के हैंडल पर झोला लटकाते समय उसके हाथ कांपने लगे, बदन में झुरझुरी होने लगी। साइकिल चलाते समय मन में ज्वार भाटा उठने लगा। वह सोचने लगा, मुफ्त में 50 रुपये अधिक मिल गए, मेरी क्या गलती, मैंने तो 50 रुपये का नोट दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना था, भूल सभी से होती है, शायद मैंने 100 का नोट दिया होगा। ऐसा समझकर उसने पैसे अधिक लौटा दिए। मुझे 50 रुपये वापिस लौटा देने चाहिए थे और उसे बतला देना चाहिए था कि मैंने 50 रुपये का नोट दिया था। अचानक संजय के अंदर बैठे शैतान ने कहा, घर आती लक्ष्मी को कौन कोई ठुकराता है क्या? फिर तुम्हें तो गेंद की आवश्यकता थी, आसानी से मिल जाएगी। और बुदबुदाया, ठीक ही तो है, भगवान ने पैसे दिए, मैं क्यों लौटाऊं और मैं क्यों ठुकराऊं। आलू प्याज के झोले को रसोई में रखकर 20 रुपये माँ को देते हुए संजय की उंगलियां कांप रही थी। उसकी माँ ने आशंकित होकर पूछा, क्यों बेटा, तुम्हारी उंगलियां क्यों कांप रही हैं? कुछ नहीं माँ, संजय बोला और खेलने चला गया। रात काफी बीत चुकी थी परंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी, साथ ही उसे गेंद का प्रलोभन भी सता रहा था। दूसरे दिन शाम को जैसे ही संजय बाजार के लिए निकला, उसका सामना उसके पिताजी से हो गया। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटे? आज 1 तारीख है, मैं तुम्हारे लिए क्रिकेट की गेंद लेकर आया हूँ। संजय की माँ, यह सब्जी रखो और वेतन संभालो, जेब से पैसे निकालकर उसकी माँ को देते हुए उन्होंने कहा।

इसमें से 50 रुपए ही खर्च किए हैं 30 रुपए की सब्जी और 20 रुपए की गेंद, बाकी 4,950 रुपए बचे हैं। संजय की माँ ने 2 बार नोट गिने और बोली, ये तो 4,850 रुपए हैं। अरे देखूं तो कहते हुए उसके पिता ने नोटों को गिना और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। तुमने ठीक गिना, संजय की माँ, 100 रुपए का एक नोट कम है। आर्थिक कठिनाइयों से संजय की माँ तंग आ गई थी और झल्ला कर कहने लगी, बार बार कहती हूँ कि वेतन पहले घर लाया कीजिए, आप है कि लक्ष्मी के रास्ते में ही लुटाते आते हैं। इतने में ही बाहर से किसी ने आवाज दी, साहब, स्वयं संजय के पिता बाहर निकले। बाहर उसी दुकानदार का लड़का खड़ा था जो एक दिन पहले भूलवश संजय को 50 रुपए का नोट अधिक दे गया था। उसे देखते ही संजय परेशान हो गया, किंतु अगले ही पल उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह युवक उसके पिता के 100 रुपए का नोट वापिस करते हुए कह रहा था, साहब, आपने सब्जी के लिए जो 100 का नोट दिया था उसके साथ 100 रुपए का नोट और सटा हुआ था, शायद आप जल्दबाजी में थे

0: वह संजय को 50 रुपये का नोट अधिक दे गया था। उसे देखते ही संजय परेशान हो गया, किंतु अगले ही पल उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह युवक उसके पिता के 100 रुपये का नोट वापस करते हुए कह रहा था, साहब आपने सब्जी के लिए जो 100 का नोट दिया था उसके साथ 100 रुपये का नोट और सटा हुआ था। शायद आप जल्दबाजी में थे और आप शीघ्रता से आगे बढ़ गए। उसकी ईमानदारी देखकर संजय के पिता को बड़ी खुशी हुई और उसे 10 रुपये का नोट देते हुए बोले, बेटे इसे रख लो, मैं खुशी से दे रहा हूं। तो वो दुकानदार का लड़का बोला, नहीं साहब, भूल सबसे होती है, आज आपसे तो कल मुझसे भी हो सकती है। ईमानदारी इनाम के लिए मानवता का तकाजा है। नवयुवक की ईमानदारी के सामने संजय ने अपने आप को दीनहीन स्थिति में पाया। उसने तुरंत 50 का नोट निकालकर उस युवक को दिया और बोला, मुझे माफ कर दो भैया, ये रुपए आपके हैं, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी। इसके बाद संजय अपनी आप बीती सुनाकर रो पड़ा और उसकी माँ ने उसको सीने से लगा लिया।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पाठ प्रवीण राजपाल से। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

घर परिवार, इस फिल्म में आप सुन रहे थे नितिन मुकेश को। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के। दोस्तों आइए बात करते हैं नर सेवा नारायण सेवा की। नर सेवा ही नारायण सेवा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य की सेवा करना ही नारायण की यानी भगवान की सेवा करने के बराबर है। ये विचार हमें सिखाता है कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए जरूरतमंदों की सेवा करना सीधे तौर पर भगवान की सेवा करने के बराबर है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार में सबसे बड़ा कोई दूसरा पुण्य का काम नहीं है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, गरीब को वस्त्र दिलाते हैं, बीमार की देखभाल करते हैं या किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, तो हम वास्तव में नारायण की सेवा कर रहे होते हैं। ये भावना मानव धर्म को सबसे अलग और श्रेष्ठ बनाती है, क्योंकि सभी में ईश्वर को देखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। सेवा इसलिए भी करनी चाहिए कि दूसरों का तो भला हो, साथ में खुद का भी भला हो, क्योंकि सेवा करने से इंसान के अंदर अहंकार खत्म होता है।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म गोपी से। दोस्तों, एक पुरुष को शिक्षित करने से केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, किंतु एक स्त्री को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित बनता है। नारी शिक्षा समाज की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार को सही दिशा देती है, बल्कि पूरे समाज को उन्नति की ओर ले जाती है। अरस्तु ने कहा था, नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर करती है। नारी शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होती हैं। हमें हर लड़की को शिक्षा का अवसर देना चाहिए, ताकि एक समान, प्रगतिशील और खुशहाल समाज का निर्माण हो सके और देश आगे बढ़ सके।

दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। इस कार्यक्रम से अपने दोस्त गुलशन को दें इजाजत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समय हुआ है समाचार प्रभात का।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के

0: सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख

0: करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: 21 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला

0: हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन ऑंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्ती रां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती

0: रूप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 चार गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तिजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इकतदार आला और इलाकाई सालिमियत के तई भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफेन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेचा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खासतौर पर तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मसनूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफ्द के हमरा आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुजाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टीम दोतरफा तिजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरातकार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है और हर किसी ने यह महसूस किया है कि कैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़्यादत में भारत में हर शोबे में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमात अंजाम देने का मौका हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफास किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़िश्ता 12 साल में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक इकदामात में नुमाया तब्दीली आई है। हुकूमत की जानिब से हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके और मुआशी शमूलियत के लिए किए गए इकदामात इस तब्दीली के मुहर्रिक हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जिसका आगाज 2015 में किया गया था, करोड़ों ख़वातीन अपने कारोबार को शुरू करने और वसत देने के लिए ज़मानत से मुबर्रा कर्ज हासिल कर पाई हैं। मस्कुरा स्कीम के तहत इस साल मार्च के आखिर तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का कर्ज दिया जा चुका है, जिसमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख्वातीन को दिए गए। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए तिरुपुर तमिलनाडु की रिहायशी वंशीरी ने बताया,
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब

0: अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उमानिया जैसी कलीदी स्कीमों की बदौलत बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्मों तक ख्वातीन की पहुंच बढ़ी है। जनधन योजना के तहत ख्वातीन के 33 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश में शिमला की रिहायशी सरोज बाला ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों से मुतालिक रकम अब सीधे उनके बैंक खाते में मुंतकिल की जाती है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: इख्तराई प्रोग्रामों और मौजू पॉलिसियों के साथ ख्वातीन एक खुद कफील और सबकी शमूलियत वाली मईशत को तश्कील देने में अहम रोल अदा कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: सुप्रीम कोर्ट में 9 तकरीर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्री की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने यह जानकारी दी है। CBSE ने तलबा को ये सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए दरख्वास्त देने के तरीके के बारे में हिदायत के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली जिले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनवो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ्फुज़ में तआवुन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरेदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना खंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सैयाहों के लिए खुली रहेगी।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: काबिले जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाकई है जहां मुश्किल जुग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनजर रखते हुए सयाहों को जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं ताकि उनके सफर को महफूज और लुत्फानंदोज बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा दरिया पर जेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की 2 इंक्वायरी कमेटियां तश्कील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के जिला मैजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया के जिला इंतजामिया की जानिब से तश्कील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े से वाबस्ता सभी इंतजामी, तकनीकी और तरीक़ाकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जांच कर रही है। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में कुरारा थाने में केस दर्ज किया गया है। साल 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अब कश्ती रानी के मुकाबले वाले बड़े बैन अलावी खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करेंगे जिसमें एशियाई खेल और वर्ल्ड कप सर्किट शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: खेलों के महकमे की वजारत ने कहा है कि इन कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया जाना तमकों के इनफरादी इम्कानात पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय कश्ती के कई खेल मुकाबलों में पायदार इस्तेहकाम कायम करने की एक और कोशिश है। जिन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले बलराज पंवर, एशियाई गेम्स 2022 में चांदी का तमगा हासिल करने वाले अरविंद सिंह और 2022 के ही एशियाई गेम्स में 2 तमगे

0: मुकाबले जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। शामिल किए गए बेशतर खिलाड़ियों को खासतौर पर 2026 के एशियाई खेलों को जहन में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 किए। वरिंद्र सिंह ने 5वें मिनट में 1 किया, जबकि शाहरुख अली ने खेल के 54वें मिनट में जोरदार तरीके से गोल किया। इस कामयाबी के साथ ही पूल ए में कोरिया और जापान के साथ साथ भारत के भी 6 हो गए हैं। भारत कल अपना आखिरी पूल मैच चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा। केरलम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर 14 जिलों में से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने

0: के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 गोल किए। वरिंद्र सिंह ने 5वें मिनट में 1 गोल किया, जबकि शाहरुख अली ने खेल के 54वें मिनट में जोरदार तरीके से गोल किया। इस कामयाबी के साथ ही पूले में कोरिया और जापान के साथ साथ भारत के भी 6 पॉइंट हो गए हैं। भारत कल अपना आखिरी पूल मैच चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा। केरलम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर 14 जिलों में से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और सालिसों के तवस्सुत से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुत्तला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फौजी वहां रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्ला ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 MLA संदीपन साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई दोनों रहनुमाओं की जानिब से पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों, कलीदी मीटिंगों में अदम मौजूदगी और पार्टी क्यादत मुखालिफ बयानात की वजह से की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमा के सदर के दरमियान हुई बातचीत को नुमाया किया है। वजीर आजम ने म्यांमा के तई हिमायत का इरादा किया, जबकि सदर ओमिन आउलाइन ने कहा कि म्यांमा में भारत मुखालिफ अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 37 हो गई। रोजनामा इनकलाब की नीट इम्तिहान से मुतालिक सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का नीट इम्तिहान कंप्यूटर से कराने से इनकार, पेपर लीक की वजह से दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की गई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। म्यांमा के सदर ओमिन आउलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ भजन।

0: भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतकड़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां, जल स्रोतों के पूजन के साथ कैच द रेन कार्यक्रम का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2047 के विकसित भारत के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री से कल शिष्टाचार भेंट के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी का राजस्थान के प्रति विशेष स्नेह और आत्मीय जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन विकसित राजस्थान के संकल्प को शक्ति प्रदान करता है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री से सुशासन और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन हासिल किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संगठन से जुड़े विषयों और आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकार बातचीत में कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी बना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि इस संबंध में एक मिलते जुलते नाम वाली एक साइट से लोगों को भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। पीआईबी ने आमजन से भ्रामक जानकारी से बचने और आधिकारिक साइट से ही प्रमाणिक जानकारी लेने की अपील की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कल नई दिल्ली से स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में लोगों को जानकारी देना है। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर समापन आयोजन में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम रखा जाएगा और विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी। इस दिन सभी ग्राम पंचायतों में अभियान की उपलब्धियों और स्वच्छ भारत मिशन के नियमों पर चर्चा की जाएगी। अभियान का उद्घाटन करते हुए श्री सी आर पाटिल ने विश्वास जताया कि ये अभियान जन भागीदारी बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं, जबकि अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। वाहनों के मूल स्वरूप में बदलाव कर उनमें मादक पदार्थों का परिवहन और उनका गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत परिवहन विभाग ने सभी परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा देश भर में इस संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। विभाग के अनुसार राज्य में

0: संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आती हैं जिनमें नियमों के विपरीत अवैध मॉडिफिकेशन कर प्रेशर और एयर हॉर्न अनधिकृत लाल और नीली बत्तियां लगाने का काम किया जाता है ऐसे वाहनों का उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों और अपराध में भी किए जाने की संभावना बनी रहती है साथ ही सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है विभाग ने सभी वाहन मालिकों से वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन को 3 दिन के अंदर हटाने की अपील की है प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं जल स्रोतों और सरोवरों के पूजन के साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम रखा गया है इसमें वर्षा जल को संग्रहण करने और पेयजल भंडारों के रख रखाव पर आम जन को जानकारी दी जाएगी 5 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर राज्य भर में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है सरकार की इस पहल से राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले प्रदेश में जल संरचनाओं के संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है इधर अभियान के तहत सवाईमाधोपुर में जल संसाधन विभाग की ओर से मानसरोवर बांध पर कार्यक्रम रखा गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें राज्य और केंद्र की जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी
1: कार्यक्रम के तहत जल पूजन नहरों खालों की सफाई डीसिल्टिंग श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी इसके अलावा कैच द रेन जल संचय जन भागीदारी और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे साथ ही नवीन जल संरक्षण कार्यों के शिलान्यास और पूर्ण कार्यों के लोकार्पण होंगे विभाग द्वारा वर्षा जल संचय संबंधी तकनीक की जानकारी तथा जल परीक्षण अभियान भी संचालित किया जाएगा सतीश वर्मा आकाशवाणी समाचार सवाईमाधोपुर
0: और अब मौसम प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में कई जगहों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहीं सरहदी जिले जैसलमेर में कल देर शाम तेज आंधी के साथ झमाझम बरसात हुई जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली बालोतरा बाड़मेर और आसपास के इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां धूल भरी आंधी से आसमान में गुबार छा गया
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया इस दौरान तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया जिला मुख्यालय के अलावा रामसर चौहटन धनाऊ और सेड़वा समेत कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई तूफानी हवाओं के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए इस दौरान रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही तूफानी बरसात से तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है इस बीच मौसम खुशगवार बना हुआ है जसवंत सिंह डूडी आकाशवाणी समाचार बाड़मेर
0: बांसवाड़ा उदयपुर और सलूम्बर के साथ दक्षिणी जिलों में भी देर रात तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां बनी रहीं भरतपुर दौसा करौली और आसपास के इलाकों में भी अंधड़ और बरसात से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और टीन टप्पर उड़ गए और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा नमस्कार
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं सुबह के 9:10 हुए हैं श्रोताओं आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल कलाकार हैं सुलोचना खमीर

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम और उमंगल अब यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे सुलोचना खमीर को। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत था राजेश रोशन का, आवाज़ किशोर कुमार की थी और फिल्म का नाम था जूली।

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। संगीत था आर डी बर्मन का, गीत के बोलते मजरू के।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म कलाकार से। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का गीत के बोल, इंदीवर और मनोज कुमार के।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गा मेरे मन गा।

ये गीत आप सुन रहे थे पलक मुचल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म आशिकी 2 से। संगीत था जीत गांगुली का, गीत के बोल थे इरशाद कामिल के।

जन्नत, इस फिल्म में आप सुन रहे थे के को। संगीत था प्रीतम का, गीत के बोल थे सईद कादरी के।

0: ये गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म नमस्ते लंदन से। संगीत था हिमेश रेशमिया का, गीत के बोल थे जावेद अख्तर के। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इस अंतराल के बाद।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में फिल्म जब वी मेट से। संगीत था प्रीतम का, गीत के बोल थे इरशाद कामिल के।

तुम मिले इस फिल्म में आप सुन रहे थे जावेद अली, इरफान अशरक और शादाब को। संगीत था प्रीतम का, गीत के बोल थे सईद कादरी के।

ये गीत आप सुन रहे थे अंकित तिवाड़ी की आवाज में फिल्म एक विलन से। संगीत था अंकित तिवाड़ी का, गीत के बोल थे मनोज मुंतशिर के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गा मेरे मन गा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव के साथ साथ एफएम पर भी 100.1 MHz पर सुन रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम डीआरएम चैनल 909 KHz, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमें सुना जा सकता है। 11 बजे हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। राकेश नाथ की तरफ से

जहाँ प्यार मिले। अभी आपने इस फिल्म का ये गीत सुना। आइए अब सुनते हैं ये गीत। इसे हमने लिया है फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। मजरू ने इस गीत को लिखा और संगीत चित्रगुप्त का है।

आइए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है दीदार, आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत नौशाद का है।

आइए श्रोता, आप सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है लैला मजनू, आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, मदन मोहन का संगीत है और शाहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है।

0: आइए अब सुनते हैं ये मधुर सा गीत। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: आइए सुनते हैं बॉबी फिल्म का ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

आइए अब सुनते हैं प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सब्बीर कुमार की। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है शोला और शबनम। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है।

आइए श्रोता, अब सुनते हैं दो बदन। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

आइए श्रोताओं, सुनते हैं पतिता, इस फिल्म का ये गीत। आवाज दी है लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है काजल, आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

आइए श्रोता, अब सुनते हैं खिलौना। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब श्रोता सुने कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर श्रोता सुनेंगे एक ही शीर्षक से फिल्म संगीत। आज का शीर्षक रहेगा इंसान। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30। 12:50 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें जानकारी का विषय रहेगा मिट्टी पानी का पीएच मान कैसे परख करें। 1:05 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे जरूरी जानकारी सड़क सुरक्षा, लू लगने के लक्षण व बचाव, कपड़ों को दें नया लुक। इसके अलावा बहनें सेहत में फायदेमंद गोंद कतीरा, इस विषय पर भी जानकारी सुन सकती हैं। 2 बजे श्रोता दोपहर समाचार सुन सकते हैं। 2:30 पर फिल्म संगीत सुना जा सकता है। 3 बजे श्रोता हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम सुनेंगे और संध्या 5 बजे युववाणी का प्रसारण होगा। इसमें राजस्थान के

राष्ट्रीय उद्यान जीवन में अध्यात्म का महत्व, ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे और नुकसान, इसके अलावा नशा जीवन का नाश और आज का इतिहास विषय पर जानकारी श्रोता सुन सकते हैं। सराइकी का समय रहेगा संध्या 6:05। चौपाल का प्रसारण संध्या 7 बजे किया जाएगा। भक्ति संगीत 7:45 पर 8 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं। गौरबंद का प्रसारण रात्रि 9:15 पर किया जाएगा। 10 बजे आपनों राजस्थान इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

अभी श्रोता कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन शिडी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमें सुना जा सकता है। 12:05 हुए हैं। अब श्रोता सुने एक ही शीर्षक से फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आज का शीर्षक है इंसान। इस शीर्षक को हमें बनाकर भेजा है रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी और रामपुरा मटोरिया से मुरारी शर्मा ने।

अभी आपने पैगाम, इस फिल्म का ये गीत मन्नाडी की आवाज़ में सुना। अब आपको सुनवाते हैं धूल का फूल, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा और संगीत एन दत्ता का है।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती। इस फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, मजरू ने इस गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं नास्तिक, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है प्रदीप ने। इस गीत को लिखा ही प्रदीप ने और संगीत श्री रामचंद्र का है।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है अमर रहे ये प्यार। आवाज दी है प्रदीप ने।

इस गीत के साथ ही एक ही शीर्षक से फिल्म संगीत यही संबंध होता है। आज का शीर्षक था इंसान। इस शीर्षक को हमें बनाकर भेजा था रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी और रामपुरा मटोरिया से मुरारी शर्मा ने। हम आकाशवाणी के एक ऑटेंशिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनते हैं गुलाम अली की गाई चंद गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में गुलाम अली की गाई चंद गजलें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें आज जानकारी का विषय है मिट्टी पानी का पीएच मान कैसे परख करें। श्रोताओं, आज जानकारी का विषय है मृदा में जैविक कार्बन का महत्व है।
1: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, किसानी में सबसे जरूरी जी की चीज़ है वह है अपनी भूमि की ताकत, और बिंग बाद में ही सारो काम जी को है वो चालू हुए, चाहे प्रमाणित उन्नत बीज हुए, आपा ऊपर से कोई भी जी की खादा देवा बंगो काम है, तो सबसे पहला जरूरी चीज़ जी की है वह है माटी को ताकत होना। माटी में जैविक कार्बन, माटी की जी की गुणवत्ता है भी वास्ते सबसे जरूरी चीज़ है, और आ माटी की संरचना ने बढ़िया बनावे। कार्बनिक जी का पदार्थ हो वह माटी के कणा ने बांध गए और बाने संगठित कर दिया, जकेशू के हुए किसान भाइयों के माटी की संरचना में सुधार हो जाए, और जब संरचना में सुधार हुए तो बिंग माँ पानी ने संग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए, और आप जाना के फसल चाहे कोई भी करा पानी की जरूरत जी की है बूंटे ने समय समय पर पड़ती रहे, तो कार्बनिक पदार्थ जी का है वह पानी ने अवशोषित करे और बिंग जी की धारण करने की क्षमता है भी ने बढ़ा दिया, जकूँ बूंटे ने पानी जी को है लंबे समय तक उपलब्ध होते रहे। कार्बनिक जी का पदार्थ है वह माटी में पोषक तत्वों की उपलब्धता ने भी बढ़ा दे, और पौधों वास्ते पोषक तत्व जी का है वह आसानियों उपलब्ध करा दे, जकेशू बूंटे की बढ़वार चोखी हुए, बढ़वार चोखी हुए जब बूंटे पर उपज जी की है बापा ने बढ़िया मिले, गुणवत्ता बढ़िया हुए, उपज बढ़िया हुए, तो किसान जी को है बिना बिंगी मेहनत को पूरा फल मिल जाए। कार्बनिक पदार्थ जकी माटी में उसी भट्टे जी का सूक्ष्म जीव है वहाँ वास्ते भोजन जी को है वो उपलब्ध रहेगा, जी को माटी ने स्वस्थ बनाए राख सी। माटी की ताकत बनाए रखने वास्ते सब शू जी की जरूरी चीज़ है वह बिंग है माँ जी का विद्यमान सूक्ष्म जीव है बन है तकड़ा रखना, बे तकड़ा रवे जन माटी की जी की स्वास्थ्य है वो भी तकड़ो रवे। जलवायु जद परिवर्तन हुए तो बिंगे भी प्रभाव ने माटी के माँ जी का जैविक कार्बन है वो बीशू संग्रित करने वालों जी को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हुए बिंगी मात्रा कम हुए जी की जलवायु परिवर्तन ने कम करने वास्ते मदद करे। माटी में कार्बनिक जी का पदार्थ है बाँसू पोषक तत्वों को निक्षालन जी को है बीसू बचावे, और बने माटी के अंदर बनाए रखे पोषक तत्व माटी के अंदर बनया रहे तो अपनी फसल ने वह समय समय के ऊपर भोजन भी उपलब्ध करावे, पानी भी उपलब्ध करावे, और अपनी फसल ने खत्म को नहीं होने दे। ऊपर की जी की माटी है बिंगे भी कटाव ने कम करे। कार्बनिक पदार्थ जी का है वह माटी ने कणाशु बांध देवे और कटाव ने कम कर दे, जखम भूमि जी की है वह उपजाऊ रवे और बिना ताकत मिलती रवे। वायुमंडल के अंदर जी की कार्बन डाइऑक्साइड है बिंगी मात्रा

बढ़ती जान लाग रही है, आपां जाना ही हाँ। तो इसे में भी कार्बन डाइऑक्साइड ने वायुमंडल की बजाय दूसरी जगह पर इकट्ठी करने वास्ते वो सबसे बढ़िया साधन है। माटी की ताकत ने बनाए रखने वास्ते और माटी की सही आपने ताकत को पतो लगाने वास्ते जरूरी है किसान भाइयों कि समय समय पर आपा अपने माटी की जी की जांच है बकरामता रवा, क्योंकि माटी एक प्राकृतिक पिंड है वो आपा जाना, और माटी आपको एक स्वतंत्र अस्तित्व रखे। फसल ने फसल शू आपा ने उत्पादन लेने वास्ते बिंगे पोषण करने वास्ते यांत्रिकी सहारे वास्ते माटी की जांच और माटी को स्वतंत्र रहना बहुत ही जरूरी है। और इन वास्ते जरूरी है कि माटी की समय समय पर आपा स्वास्थ्य की जांच जी को है बा करामता रहा, ताकि माटी में जिका भी पोषक तत्व है बांगी चाहे अधिकता है चाहे न्यूनता है, यानी कि बफर है चाहे कमी है, बिंगो ज्ञान आपा ने रहना चाहिए। वह फसल की वृद्धि में उपज में आपा ने बता देसी कि तरीके का आपा उर्वरक घाला, के तरीके का कीटनाशक का उपयोग करा, ताकि आपनों जी को फसल है बा पैदावार है बढ़िया दे देसी। तो माटी की जांच बहुत ही जरूरी है। माटी की उर्वरा शक्ति को आपा ने पतो लाग जाए, बिंग अनुसार आपा खाद उर्वरकांगी जी की जरूरत है बी हिसाब से संतुलित मात्रा जी की है बा आपा निर्धारित कर सका। माटी के अंदर उत्पन्न होने वाला विकार जिया अम्लीयता है, रे कलर अंगू पतो लगानो भी अपने वास्ते जरूरी हुए तो माटी जांच छू इंगो भी ठा पड़ जाए और फिर आपा इंगे सुधार का उपाय कर सका। उर्वरकों के प्रयोग छू होने नालों जिको अलग छू उपज पर आर्थिक आपनों जिको नुकसान है बिना आपा कम कर सका। माटी की उर्वरकता समय समय पर आपा अगर पतो लाग जाए आपा ने तो बी हिसाब से ही आपा अपनी फसल को भी चुनाव कर सका। माटी को जिको नमूनो है बिंगा लेने का भी अलग शुं तरीका है। माटी की खुदाई वास्ते आपा अपने खेत के अंदर चुनाव कर लिया अलग अलग जिग्यां को, फिर आपा फावड़े छू खुरपी छू या लकड़ी के कोई औजार छू प्लास्टिक के औजार छू जिया खुरचनी हुए बी छू आपा भी नमूने ने लेवा। नमूनों जद ले लेवा तो बिने एक बाल्टी के माँ ट्रे के माँ या प्लास्टिक के टब के माँ आपा भेड़ो कर लिया बिने, और फिर बिने एकदम रला गए बिंग ही अलग अलग हिस्सा कर लिया, फिर बा सारा हिस्सा मुँह माटी थोड़ी थोड़ी निकाल गए बिंगो एक नमूनो आपा बना गए, और जठे भी आपने नज़दीक में माटी के नमूने की जांच हुए बट आपा भी नमूने ने लेके जावा। विशेष तौर से आपा ध्यान रखा जिया मेड़ की माटी है या कोई वृक्ष के नीचे की माटी है या फिर जठा आपा कूड़ डिगर रखी है या जठा आपा खाद पहला गोबर की भेड़ी कर रखी है, बटे शू आपा नमूनों नहीं लेवा, क्योंकि फिर बाद जांच के माँ आपा ने सही जी की जांच है बा मिलेगी कोनी और आपा फिर भ्रमित हो जाएगा। तो आ तरीका ने अपना के ही आपा नमूनों तैयार करना है और फिर भी नमूने की आपा जांच करानी है। जब आपा थैली तैयार करा तो बिंगा ऊपर आपा अपनी भूमि को पतो लिखा, जके भी चक पर है जको भी आपनों रकबो है, गाँव को नाम लिखा आप को नाम लिखा और बी पर्ची ने बी थैली के ऊपर चिपका गे, और बिंगा दो नमूना रखा आपा, एक आपा जटे भी जांच हुए बटे दिया वा, और जद भी आपा ने भी जांच को वापिस आपने नमूनों मिले कि भाई इन चीज़ की कमी है उर्वरकता की इतनी कमी है और भूमि के अंदर आ ताकत थारे बचेड़ी है बी हिसाब छू आपा जद किसानी शुरू करा तो पहला अपनी भूमि ने बे सारा पोषक तत्व बे सारी खादा देने के बाद में आपा बी अंदर बिजाई करा बी छू के उसी के भूमि की में ताकत होगी और जिको भी आपा फसल बीजांगा बिंग आपा ने पैदावार जी की है बा बढ़िया मिलेगी। खाली पैदावार बढ़िया कौन मिले बिंगे सागा आपा ने फसल की जी की गुणवत्ता है बा भी बढ़िया मिलेगी। इंगे अलावा आपा ने ध्यान में रखने वाली

0: चीज़ है भाई, प्रमाणित उन्नत बीज लेवा आपा, बीज को टीकाकरण करा, बीज को उपचार करा, ताकि भूमि जनित जीका रोग है वह अपनी फसल ने नुकसान ना करे। और इन तरीके से अगर आपा किसानी करांगा किसान भाइयों, तो अपन ने बढ़िया पैदावार मिलेगी, गुणवत्ता वाली पैदावार मिलेगी, और गुणवत्ता वाली बढ़िया पैदावार जद होगी और आपा मंडी के माँ लेके जावांगा, तो कटन घटे भाव भी जी का है वह अपन ने बढ़िया मिलेगा। तो अब हूँ चालू, राम राम सा, राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। आज इसमें जानकारी का विषय था मृदा में जैविक कार्बन का महत्व। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने आज शपथ ली। कॉलेजियम की 22 और 27 मई को हुई बैठकों में इन पांचों के नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्ति को मंजूरी दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन पांचों न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सीबीएसई ने बताया कि ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के पास आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राजस्थान में भागीदारी बढ़ रही है। प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और बिजली बिल पर खर्च से मुक्ति के लिए विद्युत उपभोक्ता लगातार इस योजना से जुड़ रहे हैं। योजना के तहत मई महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो फरवरी 2024 से योजना के शुरू होने के बाद अब तक का सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है। राजस्थान डिस्कॉम के सहयोग से चल रही योजना में बीते महीने सबसे अधिक 9,316 सोलर प्लांट जोधपुर डिस्कॉम में लगाए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में प्रदेश में 830 मेगावाट क्षमता के लगभग 2,17,000 से अधिक रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और लगभग 1,460 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 12 सालों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के साथ काम कर रही मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। सरकार के सतत प्रयासों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री

मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जोड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 3-4 दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां अभी कुछ दिन और बनी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव 5 जून तक बना रहेगा। विभाग ने आज 19 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और आंधी के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई शहरों में पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन सुणन आली सगळी भेणा ने बाई केणा गा मोकळा मोकळा राम राम। थारा सारा गो हिवड़ेस्यू स्वागत है थारा आप गे कार्यक्रम घर आंगन माई। घर आंगन बहनों परिवार सेहत संस्कार और रोजमर्रा गिजकी अपनी जिंदगी है बीसू जुड़ी काम की बातें ले गए मैं फिर हाजिर हूँ। मारू माननो है कै घर गो आंगन के है कै सिर्फ ईंट पत्थर स्यू कोनी बने बल्कि प्रेम अपनोपण और समझदार शू सज्जे हुए है। इसी सोच गए सागे आज मिलया थारे खातर खास जानकारी काम की सलाह और रोचक बातें। तो बहनों चाग गुटको लियो मुड़को और जुड़ा रहो मारे सागे क्योंकि अब शुरू करा थारो आप गो प्रोग्राम घर आंगन। पर कार्यक्रम शुरू करन शू पहला आपा सुन लिया ओ प्यारो सो भजन। तो आओ बहनों सुनाओ प्यारो सो भजन।

बहनों, आज है मंगलवार और आपां सुनियो हनुमान जी को इतो चोखो भजन। तो बहनों, अब आपां बातां करा शुरू। तो देखो बहनों, आज आपां बात करा सड़क सुरक्षा के बारे में और बीच यूँ जुड़ी जानकारी के बारे में। तो देखो बहनों, सड़क पर के है चालते टेम आपां ने सावधानी रखांगा नी तो आई के है कि अपनी सारूँ बड़ी सुरक्षा होसी, है नी। क्योंकि देखो तो अपनी आ जिंदगी है आ बहुत ही कीमती है और देखो केठा कितनी जोनिया बाद आ मन खजोनी आपां ने मिले। तो ई जीवन को आपां ने की है कि मूल्य समझणो है और की है कि थोड़ी सी भी जल्दबाजी के कारण की है आपां भगवान ने न्यू तो देना मिलो भी ले जाओ, है नी। तो आ बात सही को नहीं, क्योंकि देखो आपने सागे कितना रिश्ता जुड़ेड़ा हुआ है नी। एक माँ है बिंगो बेटो भी हुआ है, एक लुगाई गो भाई भी हुआ है, एक लुगाई गो आदमी भी हुआ है, कितना रिश्ता अपने घरे आपने अडीकता हुआ है। तो ई वास्ते जद भी सड़क पर जावा तो आपकी सुरक्षा को हमेशा ही ध्यान रखा। सड़क सुरक्षा को मतलब है आपको खुद को और दूसरा ने दूसरा की सुरक्षा को ध्यान रखनो। थोड़ी सी लापरवाही के कारण की वे बहनों दुर्घटना को कारण बन जाए, है नी। ई वास्ते की है कि आप कई जरूरी बातें हैं जिकी ने जे आप ध्यान रखा नी तो की है कि आप सुरक्षित रह सका, है नी। तो देखो भी घर में आप घरे हुई हाँ अपने घर वाला या फिर देखो कोई भाई बंधु कोई भी जना भी मोटरसाइकिल पर बहरे जावे नी या फिर देखो कार में जानता हुआ है तो बन आपने चिताणु है सावचेत करणु है भी हेलमेट जरूर लगा के जावे। कई बार आजकल का टाबर ही है बे बारे जावे तो बे सोचे भी मारा भाई बाल खराब हो ची, है नी। तो बे हेलमेट लगाने के डर बोकर भी हाँ पर इं बन गुंगान ठाक होनी।

हेलमेट लगा छो नी तो जिंदगी सोहनी बन जाएगी, है नी। जे थोड़ी सी आखड़ी आ जाए, मान लो कोई और आ जाए, है और आ देखो खोपड़ी की हुआ तो बहुत कच्ची हुआ, पड़ता ही टुकड़ा हो जाए, नी। इन वास्ते हेलमेट बहुत ही जरूरी हुआ। तो आपा जिद कर गए, जे टाबरिया नहीं माने तो देखो माँ तो जिद कर भी सके, बहन भी जिद कर सके, नी। जिद कर गए आपा अपने, देखो टाबरिया ने, भाइया ने, या फिर आप बरतार है तो बने दकों जिद कर गए, मने हेलमेट आपा पिरावा। जे भी ना पे रहे तो बने भाई अच्छी तरह आपनों आप को कोई वास्तु तो देगे भी, आम भाई थे पेरो, है नी। की मिलवाई तो क्यों भी कर सके, है नी। क्या भी करके बने हेलमेट जरूर पहन खातर बन मजबूर करो भी हेलमेट लगा गई जाओ, क्योंकि देखो जब हेलमेट पहरेगा तो पूरा परिवार खुश रहेगा, है नी। और सीट बेल्ट जे कार में बैठन लाग रहे है तो सीट बेल्ट की भी बहुत ज्यादा भाव है उपयोगिता। जे वो नाल गाइड हो, मान लो कोई भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए और हो जाए तो बहुत ज्यादा फायदा हो। और एक तेज गति से हमेशा बचना चाहिए, कई बार इतनी जल्दबाजी हो एक बजाए ले जाए पता नहीं कट्ठी उड़ गई जानो, है नी। क्यों हो गयो जे 1-2 मिनट लेट हो जाए, सेट हो जाए तो कोई बात को नहीं, भी थान लेट होने गुड रहे थोड़ा पहला चाल जो, है नी। इं ना हो भी हाँ भाई बाजा उड़े ही जावे कोई और को देखे ही कौन भी कट्ठे के होने लाग रहे है, तो आ चीज़ गलत है। आपा ने सोचनो है और भी ज़्यादा जी रफ्तार करांगा आपा वानगी तो भी इशू की है कि एक्सीडेंट होने को खतरो ज़्यादा हुआ गो। और आजकल तो देखो फोन रहा चाल गया है, नी। तो वो सबसे जरूरी है भी आपा ने फोन को इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार आप देखा है नी भी अपने दूर क्यों जाओ, अपने घर में ही देख लिया जिला रहे आप बैठे हुआ, अरे आगे कोई मोटरसाइकिल चला फोन आ गया तो वो इं कान टेडो कर गए भी हेलमेट का माखर गाल गई भी बात करनी भेजा ही जरूरी हो जाए, नी। जे जरूरी है तो एक मुक्का एक जगह ठाम गए फिर अच्छी तरह बात कर लियो। इं थोड़ी है भी आप जिंदगी सा खिलवाड़ करा, भगवान की देड़ी जिंदगी है, इन आप सुराई में क्यों लेवा, क्योंकि बहुत मुश्किल से जिंदगी मिल रहा है। तो इं तरह से मोबाइल नू के है कि खतरो हो सके, तो आप कभी भी जे चालता हुआ वाहन पर तो कभी भी आप मोबाइल को उपयोग नहीं करना चाहिए। पहला कि सब मोबाइल होता फोन होता करे नहीं तो पहला भी तो बातें होती तो थोड़ा जे मान लो इतो ही थाना जरूरी लग गया फोन पर बात करनो तो एक साइड में खड़े हो कर गए, एक तरफ खड़े हो कर गए साधन ने फिर थे बात कर लियो, है नी। देखो लारे भी तो थारे कोई बैठे हुए है, टाबर टिक्कर बैठा है, लुगाई पताई बैठी हुए है, तो कितनी भी थारी आपकी जिंदगी तो है, लग रहा है औरों की भी तो जिंदगी है, बहने भी तो थे सोचो, है नी। तो इन तरीके से अपन ध्यान रख गए और साधन चलाना चाहिए। और फिर आप बात करा जिका ट्रैफिक का नियम है भंगो आपा ने पालन करना चाहिए। कई बार क्यों है जल्दबाजी में आप देखा कौन ये बत्तियां लग गड़ी हुए, जेबरा क्रॉसिंग हुए और संकेत चिन्ह भी देड़ा हुआ बैठा है, आना आप ने समझना चाहिए अच्छी तरह से, है नी। अच्छी तरीके से आगे आप समझ होनी चाहिए भी वो क्या खातर है, जे लाल बत्ती जगी है तो क्या खातर जगी है, हरी जगी है तो क्या खातर जगी है, आ पीली जगी है तो क्या खातर जगी है, और जेबरा क्रॉसिंग को के मतलब है, ये सारी चीज़ों को आपने समझना चाहिए, है नी। जे नहीं आपने की है अपनी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। और देखो बेनो नशे में कई लोग हुए नशे में धुत होड़ा साधन ने चलावे तो वो भी मौत ने आमंत्रण है नी। तो कदी भी पी पा गए या किन तरीके से नशे में हुए तो साधन नहीं चलाना चाहिए। और दूसरों की है जे आप पैदल चलन लाग रहा, क्योंकि ज़्यादातर तो देखो आप बाजारा में घूमता हुआ या फिर कठी जानता हुआ तो पैदल ही चलता हुआ नी, तो थोड़ा आप ध्यान रखा। एक तो देखो भी सड़क को थोड़ी दूरी बना गई चलना, है नी। कई बार कोनी गलती कोनी है, सुना नहीं आप भी हाँ सुत्या हुआ है और सुत्या पर चढ़ा जाए या बैठा हुआ है तो सड़क पर कोई सोन की जिया भी कोनी है, और सड़क को थोड़ी आप दूरी बना के भी चलनी चाहिए, क्योंकि कोई साधन बड़ो साधन है तो कोई भरोसा कोनी भी कद वो नियंत्रण बारह उजर अपने उपरी चढ़ जाए, है नी। इस वास्ते हमेशा जन्ना भी सड़क पर चलना तो एक तो देखो जन्ना भी सड़क पार करा तो दोनों तरफ देखा, इं कोई भी एक पास मुंह बाली और बस भाई चलना है तो दोनों तरफ देख गए भी इनू भी की नान तो है, इनू भी की नान तो है नी। जन्ना आप बस सड़क पार कर सियाँ तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही होसी। और सही बात है अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में, और किंग हाथ में, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है नी। क्योंकि देखो बहनों जो सड़क सुरक्षा आप अपनावांगा तो आपने अपने सागे सागे अपने परिवार ने भी आप खुशहाल बना सका। तो आपने के है कि जो जिंदगी को सफर है वो सुरक्षित करना है तो एक कई नियम है जिसका सड़क सुरक्षा का, क्योंकि देखो आजकल एक्सीडेंट वाला मामला तो बहुत होने लग रहा है। तो आपने चाहिए कि आप थोड़ा धीरज रखा मन में है और थोड़ी शाणप रखा और आपके परिवार को सोच के फिर आप घर से बाहर निकला तो इसी परेशानियाँ अपनी जिंदगी

0: परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मैनू बहुत ही सुनो भजन सुनियो। तो भजन से पहला आप बात करा लूला कण गया लक्षणा की बात करी है नी। अब आप लू छू कि बचाव कर सका इन पर बात करांगा। तो देखो बहनों लू छू बचाव खातर आपने की है, एक तो धूप में कम निकलनो है नी। इं भी जना 12 बजे छू ले गए 4 बजे के बीच में जना तेज तावड़ो है नी बी टेम के बीच में, तो आपने कोशिश करनी चाहिए जितो कम हो उसके बीतो आप बारे कम निकला है नी। एक सुधियाँ उठ गए दिन के झांझर का आपको काम कर गए बेगी निबेड़ गए, क्योंकि देखो अब टाबरान तो स्कूल जानो है कोनी, टाबरान ही चालन लाग रही है छुट्टियाँ। तो अपन करनो के है जल्दी आपको काम निबेड़ गए और अंदर टाबरान ले गए बैठ जानो है। टाबरा सगा अच्छी अच्छी कोई किताब मन कहानी किताब में पढ़ गए सुना दया है नी, कोई और जियाँ कोई जियाँ लूडो है रे सांप सीढ़ी है बिसा आप टाबरा सागे कोई खेल है बे रल गए खेला, तो इस टाबरान को भी मनोबल बढ़ेगो और टाबरान है और अपने बीच में की है कि जी को लगाव है वो और ज्यादा गहरो जाएगो है नी। इन अलावा देखो बिलू से बचन खातर की है कि आपने पानी की भरपाई राखनी राखनी है, चाहे तिस लग गए चाहे ना लग गए। इं कौन भी तिस लग सीजन में भी थोड़ी सी इं थाने अनुभव है नी, बीते में आपने बोतल है बार नेड़े ही राखनी है, बोतल सागे रखांगा और जब तिस लग गए जन्ने आप पानी पी लियो। और एक मटका को ज्यादा से ज्यादा आपने उपयोग करना है, क्योंकि देखो जी को मटका को पानी हुए नी वो बहुत ज्यादा गुणवत्ता भी माँ मिलेड़ी हुए, क्योंकि माटी को जी को पीएच मान है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है अपने खातर शरीर खातर और बहुत सारी जी की बीमारियां हैं वे भी दूर हुए। तो ई वास्ते की है कि आपने पानी की भरपाई अपने शरीर में ही रखनी है। इन अलावा देखो रात ने आप राबड़ी करके रख देव, क्योंकि देखो जी की राबड़ी हुए नी बिंगू कट्ठे मेल कौन, जो राबड़ी आप गर्मी गर्मी पी बो करानी तो लू अपने नेड़े ही कौन फटके, तो ई वास्ते आपने राबड़ी रात ने रख देनी है। और दिन के राबड़ी में छा रला गए और सुना देखो प्याजी है भी लू ने बहुत ज्यादा रोकन का कारगर उपाय हुआ है, तो नानू नानू प्याजी काट के भी राबड़ी के माई रला गए बुंदेड़ो जीरो रेड़ के संधो नमक काड़ो नमक ओ मिला के आप नाख लिया भी गम्मा। और देखो जे पुदीनो आजकल घणो ही हो रहा है तो पुदीने सुखा के बिंगू चूर्ण बना लिया पत्तियां वो भी गम्मा बिंगू टेस्ट के है बढ़ा देवे बिंगू स्वाद बढ़ा देवे, तो वो भी आप बिंगमाई नाख सका, क्योंकि पुदीने की तासीर भी की हुआ है ठंडी हुआ है, तो आपने की है कि डबल फायदा हो जाएगा है नी दुगुणो फायदा हो जाएगा, तो वो अपने खातर बेजा ही हितकारी हुआ है। और इन अलावा देखो दही को मट्ठो भी पीस खापा दही ने देखो दही में पानी रला गए बिंगमा, जे चरको अच्छा लगे चरको नहीं तो देखो मिसरी या शक्कर गोल गया आप बिंग मट्ठो बना गया आप तैयार करके पीस का, इं कोई भी खांड गोल के बैठ गया, खांड तो बहुत ही ज़्यादा रोगकारक है जे अपनी हड्डियाँ, मैं तो इन बात पर हमेशा ही जोर दूँ और मेरी बहना ने बताऊँ भी आपने जी की खांड है दोड़ियो नून है इन्हें तो अपनी रसोई से दूर ही रखनो है, क्योंकि रसोई का तो सारा काम है। जे आप चाहवा तो अपनी रसोई में अच्छी अच्छी चीज़ें रख गया आप अपने शरीर ने स्वस्थ भी बना सका और खांड और दोड़िया नून जिस चीज़ें रख गया अपने जिसका शरीर ने वो रोग बरेड़ो भी बना सका अपने याद में भी आपने के करनो है नी। इन अलावा देखो बहनों जना भी आप बाहर जावानी तो अपने जिको सिर ने वो ढक के रखना है, चाहे आदमी हुए चाहे लुगाई हुए चाहे टाबर हुए सगला ने देखो भी टोपी है तो टोपी रे नहीं तो देखो भी जे साफ हो गमछो या लुगाई जो दुपट्टो है सुती दुपट्टा गणाई हो बे आप अपने सिर ने ढक के रख सका, तो जन्म भी बारे जाऊँ भी ढक के रखी तरह आप बहर जावा जिन्हें कि आप लू से बच सका। इन अलावा देखो नींबू पानी है बेलगिरी को शरबत है नारियल को पानी है ये भी बहुत ही फायदेमंद हुआ है नी, तो आ चीज़ों को आपने उपयोग करना है। और केरी पन्नो भी बहुत ही अच्छा उपाय है, अब केरियाँ गणी आ रही है करनो की है केरी पन्ने भी आप उबाल गए अच्छी तरह केरी ने बिंगो अपने गुद्दो निकाल गए बिंगमा आप तुल इंगो थर के क्या करे रे पुदीने को पत्ता है बंगो जूस काटे बिंगमा मिला लिया नी और सूंफ ने उबाल के बिंगो पानी मिला लिया बुंदेड़ो जीरो नाख लिया कालो नमक सेंधो नमक नाख लिया है और शक्कर या मिश्री नाख के और आप केरी पन्नू बना के सारा सग आप पियो सग दूसरे ने बचाओ, तो वो भी एक कारगर उपाय है लूसू बचण को। इन अलावा देखो हल्को भोजन आपने करना चाहिए, ज़्यादा भारी तलेड़ो बुंदेड़ो चीज़ें आपने नहीं खानी चाहिए।

है नी, दलियो है रे, है राबड़ी है, इसी अच्छी अच्छी चीजें अपन ने खानी चाहिए। और बोलो जे बोलो टाइम को पड़े कोई खानो है वो अपन ने कदा भी नहीं खानो चाहिए, है नी। इनके अलावा अपन मौसमी फल है जी, अब तो देखो रे काकड़िया रे घना ही आ रहे, तो ये अपन ने अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। और एक बहनों था जरूरी बात बताऊँ भी, जी को खीरो है नी, खीरो जी सलाद टाइप कोई भी चीज़ है, तो भाई अपन ने जे अपन भूखे पेट खावा नहीं तो वो अपन ने बहुत ज़्यादा फायदे करे। रोटी साग है कई आपने तो क्यों है भी, रोटी साग बंदार के रख दें प्याज ये सारी चीजें नहीं, बिलो भी सलाद रख दियो रोटी साग खा बो करो, वो इत तो अपन ने असर कौन करे। जबकि अपन जे निर्णय काल जे भूखे पेट अपन वो खा सा नहीं सलाद, तो वो अपने काया ने तंदुरुस्त रखेगो और अपने स्वास्थ्य ने के है के और ज्यादा बढ़ावेगो। तो इन वास्ते हमेशा अपन ने सलाद को उपयोग है वो भूखे पेट करनो चीज है। और जिको डायबिटीज को रोगी है जिकन मधुमेह है बिन तो जरूरी की है भूखे पेट जिया ये जिका सलाद वगैरह है नी, मौसमी फल है ये खास के, पर रोटी खा के जे अपन फल खा लियो नी तो वो तो के है कि विश गो सो काम करेगो, है नी। तो इन तरीके से के है कि आप अपने स्वास्थ्य ने ध्यान रख सका और लू से भी बच सका, और अपने देखो आस पास जिया टाबरी है अपना बडेरा है अन्न ये ज्यादा प्रभावित हुआ है इसी चीजों, तो अन्न आप बचा के रखा लू की पेट से। और देखो बात करा भी लूगी गर्मी की, तो देखो सावधानी सबसे ज्यादा ज्यादा मोटी सुरक्षा है, पानी पियो और धूप से बचो और खुद को और आपका परिवार ने लू से सुरक्षित रखो। बहनों बात भी आप और कर सा, आओ सुना आप चो खुशो भजन।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों अब आप बात करा सेहत से भरपूर गूंद कती रहे बारे में है नी। तो बहनों उजको गूंद कती रो है वह शरीर ने ठंडक दे नालो पारंपरिक खाद्य मान्यो जावे है नी। इन आप खास का पानी में भिगोए बाद के है वो इं फूल गए जे आप चार एक दाना बाटी में गाल गए और इन पानी गाल गए छोड़ दिया नी तो आधी बाटी बर दे है नी। तो गर्मी में जिका लोगों ने किया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा शरीर में रहे कई लोगों का नहीं कई अंक यहाँ हर टाइम काल जो बड़ बोक रहा है पेट में जलन रहे है नहीं और भी कई तरीके से गर्मी में बहुत ही ठंड।

काम करे तो आपा गूंद कती रहेगा, बेजा ही फायदा है। तो आपा इन फायदा की बात करा तो देखो पहली बात तो है भी अपने शरीर ने ठंडक पहुंचावे है नी। तो गूंद कती रो गर्मी के मौसम आई आपा ने ठंडो रखन खातर माँ की है कि हाइड्रेशन सपोर्ट करने वालों मानी जाए, इन कारण गर्मियां में इनका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ जावे है नी। और पानी की कमी शूम भी बचाने में मदद करे, वो पानी ने सोख के फूल जाए इन बेवाजना है नी, बी कारण के है शरीर में तरल संतुलन बने रहे और पाचन खातर भी बहुत ही उपयोगी हुए, क्योंकि वो फूले नहीं तो इंग रेसा बन जाए और जी रेसा नहीं फाइबर के वह, और फाइबर जना ज्यादा उसी नहीं तो जिंगा फाइबर की कमी का कारण की है कब्ज है, पेट की कोई और परेशानी है या पाचन से संबंधित कोई भी परेशानी हुए नहीं, जे बे लोग गूंद कतीर का उपयोग करे तो बहुत ज्यादा आराम महसूस कर सके। और पेट में देखो भी आप जी गूंद कतीरों खा गए बिंग पानी जिया पानी के माई जी नींबू पानी या और मैं गाल गया आप पिया नहीं तो के है कि सार दिन भी आप यहाँ पेट भरियो भरियो सो महसूस हुआ गो, यहाँ लाग सी भी यहाँ पेट भरेड़ो है या खाली कोनी है नी। तो जिका लोग ने के भूख की समस्या रहे बे जे गूंद कतीरो खावे नी तो बन अटे मियाँ लाग सी बांगो पेट भरेड़ो है नी। और के है कि गर्मी में लू को मौसम जी के अभी आप बात करी थोड़ी देर पहला भजन से पहला भी लू से बचाव, तो लू से बचाव गो में वो बहुत ही फायदेमंद हो है नी। जे गूंद कतीरे ने आप सारी गर्मी गर्मी लेवानी तो शरीर में कोई भी प्रकार की गर्मी हो बाहर निकल जाए और बाहर गर्मी आपने अपने नेड़े को फटके है नी। करनो कि इंग उपयोग आपने यहाँ करनो है कि अभी जी आप बात करी भी एक दो जिया छोटा टुकड़ा ले गए और बिना के है बटकड़ी गमाई या फिर जिया कांच की आंड की है तो भी गमाई है आपां बिंगमा बिगे अगे छोड़ देवां तो वो दिन गए ताईं फूल जी सी और इयां लाग सी यहाँ जिकी टोपियां आवे नी पारदर्शी सी जेली टाइप वो बियां लाग वो करेगो। तो बिना आपां की है बहनों जियां नींबू पानी माई जी नींबू पानी बनान लाग रहा तो बिंगमा आपां मिला के ले सकां पानी माई सीधो भी ले सकां है, और जो सीधो भाव सीधो खा नहीं तो देखो दही गए माँ मिला गए दूध गए माई या शरबत माई या फिर कई प्रकार को आप ठंडो शरबत बनावा या फिर कई तरह को आप आजकल देखो टाबरा ने आम गोभो शरबत बना के देवा है नी जूस बना के देवा केले को जूस बना तो बिंग माई जी आप वो रला गए और प्यावा तो बी सुखी है कि ठंडक मिल है। और कई बात तो ध्यान रखन गए है कि जे कि नहीं चीज समस्या होती हुई नी तो बिना उपयोग इंगो नहीं करना चाहिए। और कई ऐसी बीमारियां जिका में उपयोग को नहीं हुए तो डॉक्टर जी की सलाह सुनी आपने गूंद कतीरे का उपयोग करना चाहिए। और देखो बहनों अति तो कई चीज की अच्छी को नहीं हुए है नी, तो इं ना हो भी हाँ भाई भी मैं तो गर्मी से बच्चा रहे से बोड़ी ठंडक पान खातर आप बोड़ सारो गूंद कतीरो खा लिया तो वो आपने के है के फायदा की जगह नुकसान भी कर सके। तो इन वास्ते के है कि गूंद कतीरे का उपयोग करो पर सीमित मात्रा में है नी, क्योंकि इनमें के है कि गर्मी से बचाने का बहुत ज़्यादा जिका फायदा हुआ है। तो बहनों बात तो आप और भी कर सियाँ आओ सुना आप चोखो सो गीत।

0: And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4

0: जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन

0: मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

आईश्रो तो अब सुनते हैं कोहिनूर। इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी ने, शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत नौशाद का है।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है संगम। आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं संघर्ष, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत नौशाद का है।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं राजकुमार। इस फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और शंकर जयकिशन का संगीत है।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है ममता, आवाज दी है हेमंत कुमार और साथियों ने। मधुरू ने इस गीत को लिखा और रोशन का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल

ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दिन के 3 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE के पोर्टल पर आज से काम शुरू हो गया है, जो 6 जून तक जारी रहेगा। यह पोर्टल फराहम की गई जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी में किसी तरह के एतराज़ात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक है। CBSE ने कहा कि यह सहूलत महज उन तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपने जांच किए हुए जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल कर ली है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि हिफाजती वजूहात से आधार के ज़रिए तस्दीक भी की जाएगी। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, वो अपने वालदेन, रिश्तेदारों या सरपरस्तों की आधार तफसीलात फराहम कर सकते हैं। CBSE ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में वीडियो भी देख सकते हैं कि नंबरों की तस्दीक और दोबारा जाँच के लिए किस तरह दरख्वास्त दी जाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक एबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़श्ता 21 दिनों में एबोला से मुतासर मुल्क का सफ़र किया है और उसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं, तो वो ख़ुद को अलग थलग कर ले और इसकी इतला मकामी सेहत हुकाम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वह जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकज़ों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है, ताकि अफ्रीका में हिफ्जान सेहत में मदद की जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि ये खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नज़र रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तगजियाती मतबादिल पर मुश्तमिल है। उन्होंने तवाज़ ज़ाहिर किया कि 43 टन की इस खेप से अफ्रीकी यूनियन के रुकन मुल्कों में हिफ्जान सेहत की तैयारियों और इबोला के रोकथाम की सलाहियतों में इजाफा होगा। साबिक मरकजी वजीर और हमीरपुर से रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मरकजी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्टों की तोसी, जदीदकारी और बिजलीकारी के लिए 2026-27 में 2,911 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। कांगड़ा वैली रेल खिदमात दोबारा शुरू किए जाने के मौके पर कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि मुख्तस की गई रकम सबका UPA सरकार के दौरान मुख्तस की गई सबसे ज़्यादा 104 करोड़ रुपये की रकम से तकरीबन 27 गुना ज़्यादा है। अमेरिका की योग एथलीट्स की एक टीम पहली आलमी योग आसन में चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने की गरज से भारत आ रही है। ये चैम्पियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक होगी। ख्वातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मुल्कवामी मैच आज रात इंग्लैंड में टॉन्टन के मकाम पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर के साथ तजारत, सरमाकारी और स्ट्रेटिक तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। सेहत की वजारत ने कहा है कि भारत में एबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। और ख्वातीन क्रिकेट में भारत और मेज़बान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बल्कमामी मैच आज रात टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, शंकर जयकिशन की मौसीकी से नगमा फिल्म थी आह। और समझ लीजिए, सुनिए बरसात फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नगमा निगार हसन जयपुरी, मौसीकार शंकर जयकिशन।

रह रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना, रह रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना, क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना।

अनहोनी फिल्म का नाम आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में, जिसे मौसीकी सजाया था रोशन ने। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में सामिन हम आपको सुनवा रहे हैं राज कपूर की फिल्मों के कुछ नगमे। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश शारदा फिल्म का नगमा मन्ना डे की आवाज़ में, जिसे मौसीकी सजाया है श्री रामचंद्र ने।

सामिन शर्मा के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज का प्रोग्राम खिराज अकीदत था, हिंदुस्तानी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेश खिदमत है। राज कपूर की शख्सियत और खिदमत के हवाले से जनाब मालिक अश्तर की तहरीर करदा फीचर गर्दिश में था आसमान का तारा का दूसरा और आखिरी हिस्सा।

आवारा ने एक और काम ये किया कि नरगिस को राज कपूर की मुस्तकिल हीरोइन के तौर पर नाजरीन के दिलो दिमाग में बिठा दिया। 1952 में राज कपूर की बतौर हीरो 4 फिल्में आईं, अंबर, अनहोनी, आशियाना और बेवफा। इन चारों ही फिल्मों की हीरोइन नरगिस थी। आजादी के बाद भारतीय सिनेमा में ये भी एक रिकॉर्ड है कि 1951 से 1956 तक राज कपूर की जितनी फिल्में आईं उन सब में उनकी हीरोइन नरगिस ही थी। जिस तरह राज कपूर ने दिलीप कुमार के साथ सिर्फ एक फिल्म अंदाज में काम किया, उसी तरह अशोक कुमार के साथ भी उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म बेवफा में काम किया। और अंदाज की तरह इस फिल्म की हीरोइन भी नरगिस ही थी।

1953 राज कपूर की जिंदगी का एक कड़वा मोड़ लेकर आया। उस साल उनकी तीन फिल्में आईं और तीनों की तीनों पिट गईं। उन तीनों में उन्होंने नरगिस के साथ ही काम किया था। ये फिल्में थीं धन, पाप और आह। आह फिल्म खुद राज कपूर ने बनाई थी। इन तीनों फिल्मों की नाकामी ने हालात का रुख एकदम से पलट कर रख दिया और हालत ये बनी कि बरसात और आवारा जैसी शानदार फिल्में देने वाला अदाकार बेकार बैठा था। उसके पास काम नहीं था।

खबर तोड़ हालात से निकलने के लिए राज कपूर को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था, इसलिए उन्होंने फिल्म बूट पॉलिश बनाने का फैसला किया। हैरानकुन बात यह थी कि इस फिल्म में न तो वो खुद बतौर हीरो शामिल थे और न ही नरगिस बतौर अदाकारा। चाइल्ड आर्टिस्टों को लेकर बच्चों पर यह फिल्म बनी और सन 1954 में मंजर आम पर आई। नतीजा हालात फिर से पलट गए और हर तरफ राज कपूर का चर्चा होने लगा। इस फिल्म ने कमाई भी खूब की।

0: पॉलिश जिस किस्म की फिल्म थी, इन फिल्मों को एक मखसूस संजीदा फिक्र और फन नवाज तबका ही पसंद करता है। ऐसे में इस बात का पूरा डर था कि कहीं ये फिल्म भी कमाई के मामले में न पिट जाए, लेकिन फिल्म ने शानदार बिजनेस किया और सबको हैरान कर डाला। बच्चों की नफसियात और मसाइल पर ये एक नायाब फिल्म साबित हुई।
1: आजादी के 8 बरस बाद राज कपूर की फिल्म श्री 420 मंजर आम पर आई। सन 55 में ये उनकी इकलौती फिल्म थी। इस फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए और राज कपूर की शोहरत को भारत की सरहदों के बाहर यानी यूरोप तक पहुंचा दिया। उन्होंने इस फिल्म में एक होशियार नौजवान का किरदार अदा किया जो ऐसे कामों से पैसा कमाना चाहता है जिन्हें धोखेबाजी कहा जाता है। इस फिल्म की हीरोइन नरगिस थी। फिल्म आजाद भारत में एक नए समाज की तामीर के अज़्म को जगाती है। इस फिल्म के गीतों की मकबूलियत भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है।

0: हिस्ट्री 420 ख्वाजा अहमद अब्बास के कलम का कारनामा थी। ख्वाजा साहब से राज कपूर का गहरा कल्बी ताल्लुक रहा। जब कहीं ख्वाजा अहमद अब्बास का जिक्र आता, राज कपूर बहुत एहतराम से उन्हें याद करते। सिर्फ वही क्या, उनके साथ काम करने वाले हर फनकार को राज कपूर बहुत इज्जत देते रहे। वो बार बार एतराफ करते थे कि उनकी कामयाबी में उन फनकारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: मैं सबसे बहुत कुछ पाया। दरअसल ये जितना भी इस रस में इन लोगों का हिस्सा है उतना मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि जैसे कंडक्टर एक सिंफनी को कंडक्ट करता है कि किस वक्त परकशन में बजना है जोर से और किस वक्त उसे सिर्फ धीमे धीमे बजना है, किस वक्त वायलिन और वुडविंड्स और फ्लूट्स ने उठानी है एक चीज को, बस मेरा यही काम रहा है। बाकी इसमें हर रस, चाहे वो गीतकार है, चाहे वो संगीतकार है और चाहे ये गाने वाले, इनकी अपनी अपनी एक एक की कामयाबी है, शोहरत इनकी कामयाबी है, इनका गुण है और इनकी कला है।
2: श्री 420 समाज पर गहरा तंज तो थी ही, अपने आप में रोमानियत से भी लबरेज थी। उसके गीतों में वो जादू था कि आज तक उनका सहर खत्म होने को नहीं आता। इस फिल्म के गीत हसरत जयपुरी और शैलेंद्र

सन 1956 में नरगिस आखिरी मरतबा राज कपूर के साथ दो फिल्मों में नजर आई। एक फिल्म तो खुद राज कपूर की ही थी जिसका नाम था जागते रहो, दूसरी फिल्म अनंत ठाकुर की चोरी चोरी थी। इस तरह ये खूबसूरत जोड़ी बरसों साथ साथ नाजरीन के दिलों की धड़कनों पर राज करके

0: प्यारा।
1: राज कपूर का फिल्मी सफर एक बार फिर हिचको लेखाने लगा। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में खास मुजाहरा न कर सकी। 1957 में उन्होंने फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं बनाई। इस दौरान वो दूसरे फिल्म साजों की फिल्मों में भी काम करते रहे, जिनमें एलवी प्रसाद की शारदा, रमेश सहगल की फिर सुबह होगी, एस बनर्जी की परवरिश जैसी फिल्में शामिल हैं। 1959 में फिल्म अनाड़ी में उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर नूतन ने काम किया था। फिल्म के गीतों ने भी काफी मकबूलियत हासिल की। मुकेश की आवाज में इस फिल्म का एक गीत तो बहुत ही मशहूर हुआ।

0: सन 1960 में राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है मंजरे आम पर आई। इस फिल्म से नाजरीन और खुद राज कपूर को बहुत उम्मीदें थी। इस फिल्म में राज कपूर के अलावा प्राण और पद्मिनी ने अदाकारी की। ये फिल्म एक प्यारी सी मोहब्बत की दास्तान और बहुत गहरे समाजी पैगाम से भरपूर थी।
1: एक देश है इस दुनिया में जहाँ दाता अगर भिखारी को भिक्षा नहीं दे सकता तो ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है कि मेरे को माफी दे दे भाई, जहाँ खिलाने वाला खाने वाले को बोलता है कि आपने बड़ी दया की जो मेरा चौका पवित्र किया, जहाँ एक पापी और हत्यारा अपने पाप से पलटता है तो रामायण शरी का ग्रंथ लिखता और ऋषि वाल्मीकि कहलाता है ताऊ जी, उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है।
0: इस फिल्म ने राज कपूर की फिल्मी जिंदगी

जिंदगी में एक नई उमंग पैदा की। फिल्में कमाई तो की ही, उसको बहुत से इजाजात भी मिले जिनसे फितरी तौर पर राज कपूर का हौसला एक बार फिर से बुलंदियों तक पहुंच गया। राज कपूर ने फिल्म में एक सादा लौह और प्यारे से नौजवान का किरदार बहुत खूबी से निभाया था।

राजकपूर सन 61 से सन 63 तक चार फिल्मों में बतौर अदाकार आए। इन फिल्मों में श्रीधर की नजराना, ऋषिकेश मुखर्जी की आशिक, प्यारे लाल संतोषी की

राज कपूर सन 61 से सन 63 तक चार फिल्मों में बतौर अदाकार आए। इन फिल्मों में श्रीधर की नजराना, ऋषिकेश मुखर्जी की आशिक, प्यारे लाल संतोषी की दिल ही तो है और आरसी तलवार की एक दिल सौ अफसाने शामिल हैं। सन 1964 में राज कपूर ने संगम फिल्म बनाई जिसमें उनके साथ बतौर अदाकारा विजयंती माला ने काम किया। इस फिल्म में साइड रोल के लिए राज कपूर ने दिलीप कुमार से कहा तो उन्होंने राज कपूर वाला किरदार खुद के लिए मांगा, जिस पर राज कपूर राजी न हुए और दिलीप की जगह राजेंद्र कुमार को लिया गया। इस फिल्म ने अच्छी मकबूलियत हासिल की और उसकी मौसीकी की भी खूब तारीफ हुई।

संगम, बतौर फिल्मसाज और बतौर अदाकार भी राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म की तैयारी में उन्हें काफी वक्त लगा था। राज कपूर ने संगम 4 बरस के वक्फे के बाद बनाई थी और इससे जाहिर है कि उन्हें बहुत सी उम्मीदें थी। इसी साल राज कपूर एक और फिल्म दूल्हा दुल्हन में भी नजर आए। शैलेंद्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वो थे तो गीतकार, लेकिन उन्होंने एक तजर्बा करने का फैसला किया और ये तजर्बा था कि एक फिल्म बनाई जाए। शैलेंद्र ने हिंदी के नावल निगार रेनु की कहानी पर तीसरी कसम नाम की एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में उन्होंने हीरो राज कपूर को लिया और हीरोइन के तौर पर वहीदा रहमान को लिया। इस फिल्म पर शैलेंद्र ने उम्र भर की अपनी कमाई लुटा दी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो नकादों ने इसे खूब सराहा, अवार्ड भी मिले, लेकिन अफसोस फिल्म कमाई के मामले में नाकाम रही और इसका शैलेंद्र को शदीद धचका लगा। वो इस गम से ऐसे टूटे कि कुछ दिन के बाद दुनिया को ही अलविदा

0: सन 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर में राज कपूर बतौर अदाकार आए। इस फिल्म में हीरोइन का रोल हेमा मालिनी ने किया। ये हेमा मालिनी का बतौर अदाकारा पहला काम था। इसके बाद तो वो हिंदी फिल्म दुनिया में बहुत मकबूल हुई।
1: ये था नहीं,

1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। फिल्म की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। इस फिल्म पर राज कपूर ने अपना बहुत कुछ दांव पर लगा रखा था। फिल्म में अदाकारों की एक पूरी फौज थी, जिसमें राज कपूर खुद और फिर मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर जैसे लोग शामिल थे। फिल्म का मरकजी ख्याल भी बहुत उम्दा था, लेकिन उस वक्त राज कपूर को इंतहाई धक्का लगा जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर गई।

मेरा नाम जोकर की नाकामी ने राज कपूर को बुरी तरह से तोड़ दिया। माली एतबार से उनकी हालत खस्ता हो गई, कर्ज का दबाव था। उन्होंने फिल्म कल आज और कल बनाई जिसमें पूरे कपूर खानदान ने काम किया, लेकिन ये तजुर्बा भी राज कपूर को खातिर खास संभाला न दे सका। अब राज कपूर को किसी करिश्मे का इंतजाम या इंतजार करना था।

राज कपूर को नाकामियों से बाहर आने के लिए जिस करिश्मे का इंतजार था वो 1973 में रूनुमा हुआ। इस करिश्मे का नाम था बॉबी। ये फिल्म राज कपूर को फिर से शोहरत के आसमान तक ले गई। इस फिल्म में राज कपूर ने एक नया तजुर्बा किया।

उम्रों की चाहत पर मबनी फिल्म में राज कपूर के नौखेज बेटे ऋषि कपूर और कमसिन हीरोइन डिंपल कपाडिया ने काम किया था। ये डिंपल कपाडिया की पहली फिल्म थी और फिल्म ने आते ही धूम मचाकर रख दी।

बॉबी के बाद धर्म करम, सत्यम शिवम सुंदरम, बीवी ओ बीवी और प्रेम रोग फिल्में राज कपूर ने बनाई, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिली जैसी इससे पहले देखी गई। सन 1958 में राम तेरी गंगा मैली राज कपूर की बनाई हुई आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म ने भी काफी कमाई की और बॉबी जैसा नाम कमाया।

राज कपूर के बेटे राजीव कपूर और मंदाकिनी मरकजी किरदारों में थे। फिल्म के बाज मनाजी पर एतराज भी हुआ, लेकिन बहरहाल फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की।

तलत अज़ीज़ के बाद में आप सुन रहे थे डैडी फिल्म की ये गज़ल, नगमा निगार थे सूरज सनी, मौसीकार राजेश रोशन। और सामने लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश अर्थ फिल्म की गज़ल चित्रा सिंह की आवाज़ में।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की सामाजिक, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के औकात और अपील से मुतालिक निज़ाम में अहम तब्दीलियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ मुबैना रबते की बिना पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और आज राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साहली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनाने का एक ताकतवर वसीला है, क्योंकि ये लोगों को खुद कफील, बाशऊर और बासलाहियत बनाती है। आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हकीकी तरक्की तभी हो सकती है जब माशरे के सभी तबके सामाजिक, इकतसादी और तालीम

एतबार से तरक्की करे। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सरकारी स्कॉलरशिप स्कीमों की वजह से कबायली अफराद की जिंदगी में तब्दीली आई है, क्योंकि उन्हें आला तालीम और नए मौके हासिल हुए हैं। सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि भारत में सलाहियत की कोई कमी नहीं है और उन्होंने इसकी शनाख्त करके इसे परवान चढ़ाने के लिए सही प्लेटफॉर्म फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल मशाटाइल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, एमएसएमईज, डिजिटल और बुनियादी ढांचे के शोबों में दस्तयाब मौके के बारे में तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक जनाब पॉल मशाटाइल के अज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि भारत और जनूबी अफ्रीका को बैन अल-अक़वामी सतहों पर मिलकर काम करना चाहिए। उमूर दाखिला की वजारत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों मजरिया 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वक्त की हद में अहम तब्दीलियां की गई हैं। साथ ही इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक 2025 के जाब्तों के तहत अपील दायर करने के तरीक़ाकार में भी तब्दीली की गई है। मस्कूरा तरमीम की रूह से भारत पहुंचने के 180 दिन की मुद्दत खत्म होने से पहले किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना होगा। अभी तक 180 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा करना होता था। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है, ताकि अफ्रीका में हिफ्जान सेहत में मदद दी जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने कहा कि ये खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नजर रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तगजियाती मुतबादिल पर मुश्तमिल है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि 43 टन की इस खेप से अफ्रीकी यूनियन के रुकन मुल्कों में हिफ्जान सेहत की तैयारियों और इबोला की रोकथाम की सलाहियतों में इजाफा होगा। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक इबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़िश्ता 21 दिनों में इबोला से मुतासर मुल्क का सफर किया है और उसमें बुखार, सरदर्द, बदन दर्द और दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं तो वो खुद को अलग थलग कर ले और इतला मकामी सेहत हुकाम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वो जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मुबैना रबते के सिलसिले में आजमगढ़ से मोहम्मद शेख नामी एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। एटीएस को इतला मिली थी कि पाकिस्तान की आईएसआई और दहशतगर्द तंजीमें दहशत फैलाने और भारत के इख्तदार आला, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत को जख्म पहुंचाने के मकसद से भट्टी के साथ मिलकर साजिश कर रही हैं। भट्टी के दहशतगर्दी के नेटवर्क के जरिए वो भारतीय नौजवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तवसुत से पैसों का लालच देकर और स्लीपर सेल के तौर पर काम करने की गरज से उन्हें इंतहा पसंद बनाकर भर्ती कर रही हैं। आजमगढ़ के मोहम्मद शेख के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा की गई, जिसके शहजाद भट्टी के दहशतगर्द गैंग के साथ व्हाट्सएप के जरिए रवाबित थे। शहजाद भट्टी गैंग के आकाओं ने मोहम्मद शेख को देगर रियासत की एक सियासी पार्टी के खातून लीडर को धमकाने और कत्ल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। शेख मकामी नौजवानों को शहजाद भट्टी के गैंग में शामिल होने की भी तरकीब दे रहा था। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट ने मुंबई के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सोने की स्मगलिंग के एक नेटवर्क का पता लगाया और 2 किलो 600 ग्राम सोना जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। खसूसी इतला मिलने के बाद DRI के अहदेदारों ने कल दो मुसाफिरों को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो गैर कानूनी तरीके से दुबई से भारत सोना लाने की कोशिश कर रहे थे। लेबोरेटरी में जांच से इस बात की तस्दीक हुई है कि यह सोना 24 कैराट का है। सोने को कस्टम्स कानून के तहत जब्त किया गया है।

0: साबिक मरकजी वजीर और हमीरपुर से रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि मरकजी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्टों की तौसी, जदीदकारी और बिजलीकारी के लिए साल 2026-27 में 2,911 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। कांगड़ा वैली रेल खिदमत दोबारा शुरू किए जाने के मौके पर कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर इजारे ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि मुख्तस की गई रकम साबिका यूपीए सरकार के दौरान मुख्तस की गई सबसे ज़्यादा 104 करोड़ रुपए की रकम से तकरीबन 27 गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मौजूदा सरकार ने गुज़िश्ता 12 बरस में रियासत में रेलवे के शोबे में बेमिसाल तरक्याती काम किए हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान अमरीकी सालिसी वाली जंगबंदी के बाद लबनान पर तवज्जो बरकरार है। इस जंगबंदी से खित्ते में कशीदगी कम होने के आसार पैदा हुए हैं, अगरचे ताजा के तशद्दुद की वजह से इन उम्मीदों के जारी रहने पर शक पैदा हो गया है। लबनान के अफसरान ने बताया कि हिजबुल्ला ने एक अमरीकी तजवीज को मान लिया है जिसके तहत ये ग्रुप इसराइल पर हमले रोक देगा जबकि इसराइल बेरूत के जनूबी निवाह पर हमलों को मुअत्तल कर देगा जो हिजबुल्ला का गढ़ है। अमेरिका की योग एथलीट्स की एक टीम पहली आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की गरज से भारत आ रही है। ये चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक मुनाकिद होगी। अमेरिका की योग आसन स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अमेरिका की योग एसोसिएशन और आलमी योग आसन के इश्तराक से इस चैंपियनशिप के लिए अमेरिकी टीम का ऐलान किया है। अमेरिका के वफाकी तफ्तीशकारों ने मेक्सिको से लेकर जनूबी कैलिफोर्निया तक बनाई गई जदीद तर्ज की एक जेर जमीन सुरंग का पता लगाया है और 1 टन से ज्यादा कोकेन जब्त की है जिसकी मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ डॉलर है। 4 महीने की छानबीन के बाद 4 अफराद पर इल्जाम आयद किए गए हैं जिससे स्मगलिंग के एक रास्ते का पर्दाफाश हुआ है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साइली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मायनों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ मुबैना राबते की बिना पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और आज राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साइली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर शाम के 5 बजे हैं। इस समय युवा साथी सुनते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को आज विकास पारिक का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, युवाणी के आज के अंक में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ विषयों पर बातचीत, साथ ही आपके लिए कुछ फिल्मी नगमे, फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएं। उससे पहले शुरुआत करें आज के विषय पर। जब हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान एक ऐसा प्रांत जो न केवल अपनी वीरता, अपने त्याग, अपने बलिदान के लिए जाना जाता है, बल्कि

स्थान एक ऐसा प्रांत जो अपने ऐतिहासिक स्थापत्य कला, यहाँ पे जो वन्य जीव अभयारण्य है उनके लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ जैव विविधता बहुतायत में पाई जाती है और राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान इन दुर्लभ पशु पक्षियों और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीव, वनस्पतियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाती है। राजस्थान में भी कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसके बारे में हम बात करें। शुरुआत करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और माना जाता है कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान यही है। वर्ष 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ये उद्यान विशेष रूप से बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ बाघ खुले वातावरण में आसानी से दिखाई दे जाते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ सफारी के लिए आते हैं। यहाँ बाघों के अलावा तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलकाय, जंगली सुअर, मगरमच्छ और अनेक प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। रणथंभौर किला जो उद्यान के भीतर स्थित है इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। बात करें केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान की। यह उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है और इसे भारत का सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य माना जाता है। वर्ष 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, रूस और चीन जैसे अन्य देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। इस उद्यान में 350 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और यही कारण है कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा दिया गया है। पक्षी प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए यह स्थान किसी भी स्वर्ग से कम नहीं है। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है और ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। घने जंगल, पहाड़ियाँ और नदियाँ इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण की विशेष परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तेंदुआ, भालू, भेड़िया, लकड़बग्गा जैसे कई अन्य प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरुद्यान जो कि राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है, यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उद्यान थार मरुस्थल की अनूठी पारिस्थितिकी को संरक्षित करता है और रेत के विशाल टीले, मरुस्थलीय वनस्पतियाँ और अनेक दुर्लभ जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस उद्यान की सबसे महत्वपूर्ण पहचान गोडावण पक्षी है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है और यही पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। इसके अलावा यहाँ चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली और कई प्रकार के सरीसृप भी पाए जाते हैं। ये तो बात की हमने राष्ट्रीय उद्यानों की। इन राष्ट्रीय उद्यानों से अनेक प्रकार के लाभ भी मिलते हैं, जैसे वन्य जीवों का संरक्षण होता है, दुर्लभ प्रजातियों को सुरक्षित आश्रय मिलता है, पर्यावरण संतुलन बना रहता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहर भी सुरक्षित रहती है। बहरहाल साथियों, ये तो हमने की आज की बात।

जिसमें राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की बात हमने की, और अब हम आपको सुनवाते हैं इसी शैली से जुड़ा एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हम साथ साथ हैं से। इस गीत को गाया उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों ने। गीत के बोल आर किरण के और संगीत राम लक्ष्मण का।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कई साथियों बातचीत करें एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नशे पर। नशा, जिसे हम कहते हैं कि ये जीवन का नाश है। साथियों, नशा एक ऐसी बुरी आदत है जो धीरे धीरे मनुष्य के शरीर, उसके मन, धन और सम्मान सब कुछ छीन लेती है। शुरुआत में हालांकि नशा करने वाला व्यक्ति इसे केवल मनोरंजन या शौक समझता है, लेकिन धीरे धीरे यही शौक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और विनाश का कारण बन जाती है। आज हमारे समाज में शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अफीम, चरस, गांजा और न जाने कितने प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन लोगों के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये कि युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आता जा रहा है। ये युवा वर्ग कई बार अपने मित्रों के दबाव में, कई बार दिखावे में या फिर तनाव या गलत संगति के कारण आज का युवा भी इस नशे की तरफ आकर्षित हो जाता है। साथियों, नशे का सबसे बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तंबाकू और गुटखा कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म देते हैं। शराब लीवर को नुकसान पहुंचाती है। कोई भी नशीला पदार्थ हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। हर नशीला पदार्थ किसी न किसी रूप में हमें शारीरिक और मानसिक तनाव ही देता है, शारीरिक कष्ट ही देता है। नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है।

नशे करने वाले व्यक्ति के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, परिवार में तनाव, कलह और अशांति बढ़ जाती है और कई परिवार इसी नशे की वजह से टूट जाते हैं। बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य, इन सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और समाज में होने वाले अनेक अपराधों का संबंध भी कहीं ना कहीं इस नशे से जुड़ा होता है। चोरी, झगड़े, सड़क दुर्घटनाएं, हिंसा जैसी घटनाएं अक्सर नशे की अवस्था में ही घटित होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नशा सामाजिक शांति और व्यवस्था के लिए भी खतरा बन जाता है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि नशा शरीर और आत्मा दोनों का विनाश करता है, और ये कथन आज भी उतना ही सत्य है। नशा व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है और उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि हम नशे से बच नहीं सकते या एक बार नशे की आदत होने के बाद उसे छोड़ नहीं सकते। जरूरत है केवल हमारे आत्मविश्वास की, हमारे संयम की, साथ ही साथ कुछ कदम उठा करके भी हम नशे से बच सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को इस नशे से बचा सकते हैं। जैसे हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में हमें भाग लेना चाहिए। यदि घर में कोई या आपका कोई पर्सनल तनाव है या परिवार में कोई तनाव की स्थिति है तो इस बारे में अपने मित्रों से, अपने सलाहकारों से बातचीत की जाए। नशा करने वालों से दूरी बनाए रखें, समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाएं। और युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि ये युवा शक्ति ही नशे की गिरफ्त में आ जाए तो फिर राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है। इसलिए हमें स्वयं भी नशे से दूर रहना है और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। तो अपनी बात को इसी के साथ समाप्त करें कि नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो। नशा ये

अभी आपने उदित नारायण को सुना, फिल्म थी मन। और साथियों, बात करें अध्यात्म की, जीवन में अध्यात्म का बड़ा महत्व है। अध्यात्म का अर्थ स्वयं को जानना और अपनी चेतना को समझना है। ये किसी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो तनाव मुक्त जीवन और मानसिक शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करती है। यदि हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति देता है। नियमित रूप से ध्यान और अध्यात्म से मन शांत होता है, नकारात्मक विचारों का नाश होता है और जीवन में चुनौतियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। अध्यात्म से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। यही अध्यात्म हमें जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करता है, हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देता है। और इसी अध्यात्म से ही आत्म जागरूकता आती है। इससे व्यक्ति को अपनी वास्तविक क्षमताओं, अपनी कमियों और जीवन के वास्तविक उद्देश्यों का ज्ञान होता है। इसी अध्यात्म से व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास होता है। आध्यात्मिक मूल्यों से जीवन में प्रेम, दया, क्षमा, परोपकार जैसे गुणों का उदय होता है। और अध्यात्म ही शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। मानसिक स्थिरता का सीधा असर शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आयु में भी वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना कि यदि हम

अध्यात्म से जुड़े हैं तो हम जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं, अनेक चुनौतियों को आसानी से हल निकाल सकते हैं।

साथियों, अभी आपने दिल से फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी उदित नारायण और महालक्ष्मी की। गीत के बोल गुलजार के, संगीत AR रहमान का। कार्यक्रम में बातें और भी करेंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनवाएं एक और गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म राज से। आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक की, गीत के बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

साथियों, बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की। जो हम देखते हैं कि आज के समय में विज्ञान की प्रगति से और इंटरनेट की सुविधाओं से बहुत से लोग घर बैठे ही अपना ज़रूरत का सामान मंगवा लेते हैं। इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करने से बहुत से फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। यदि हम ऑनलाइन शॉपिंग की फ़ायदों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि आप अपने घर पर, दफ्तर पर या कहीं पे भी पूरे 24 घंटे कभी भी ख़रीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको अनेक विकल्प मिलते हैं, उन विकल्पों की आप तुलना कर सकते हैं। यहाँ जब आप कोई उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो उससे जुड़े अनेक पदार्थ आपको दिखाए जाते हैं। आप विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर एक साथ कई विकल्पों की कीमतों की तुलना भी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही ये देखा जाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत बार अनेक प्रकार के डिस्काउंट, जिसे हम छूट कहते हैं या कहते हैं कि सेल, ऑनलाइन शॉपिंग पर आती रहती है। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद में कुछ उपहार स्वरूप पैसे भी आपको वापस मिल जाते हैं या फिर कोई कूपन मिल जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पैसों की बचत भी हो जाती है। और किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले आप अन्य ग्राहकों के द्वारा खरीदे गए उसी वस्तु की, उसी पदार्थ की रेटिंग देख सकते हैं कि वो किस स्थिति में है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। बड़े भारी सामान भी, चाहे वो फर्नीचर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, ऐसे उपकरणों को दुकान से घर तक लाने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग से ये सामान अपने आप आपके घर पहुंच जाता है। ये तो हमने बात की ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ फ़ायदों की। वहीं दूसरी तरफ

हम बात करें कि इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग में कई नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो खरीदने से पहले यदि हम बाज़ार से सामान खरीदें तो उसे छू करके देख सकते हैं वो किस तरह का है, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन में केवल उसकी तस्वीर दिखाई जाती है। यदि हम दूसरी बात करें तो ऑनलाइन जब हम भुगतान करते हैं तो उसमें कई बार धोखाधड़ी होने की संभावना भी रहती है, कई बार हमारा डाटा भी लीक हो जाता है, और हो सकता है कि जिन वेबसाइटों से हम सामान मंगवाने के लिए उपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। कई बार इस तरह की वेबसाइटों से उचित सामान जो हमने पसंद किया है वो नहीं आता और दूसरा सामान भेज दिया जाता है। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो वेबसाइटों को बहुत अच्छे से देखें, जो सही वेबसाइट है उसी पे हम खरीदारी करें। कई बार खराब मौसम या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से हमारे सामान को पहुंचने में वक्त लग जाता है, और यदि हम कोई सामान मंगवा भी लें और वो हमें पसंद ना आए या वो ख़राब निकल जाए, जब हम उसको वापस भिजवाते हैं तो हमारे पैसे आने में कई बार काफ़ी लंबा समय लग जाता है और कई बार वो पैसे अटक भी सकते हैं। ये कुछ नुकसान है ऑनलाइन शॉपिंग करने से, इसलिए हम यही कहेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग एक बेहतरीन विकल्प है जो समय और पैसा बचाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हमेशा सतर्क रहना है, विश्वसनीय साइटों का उपयोग करना है और पेमेंट करते समय पूरी सावधानी बरतनी है, तभी आप एक बेहतर ग्राहक बन पाएंगे और ठगी से बच सकेंगे। बहरहाल एक और गीत हम आपको सुनवाएंगे।

प्रमुख व्यक्तित्वों का जन्म हुआ। इलैयाराजा, जो कि भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 1943 को हुआ। आज ही के दिन 1955 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मणिरत्नम का जन्म हुआ। आज ही के दिन तीरंदाज महिला खिलाड़ी डोला बनर्जी का 1980 को जन्म हुआ। भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का जन्म आज ही के दिन 1932 को हुआ। आज ही के दिन 1988 को भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक और अभिनेता राज कपूर का निधन हुआ। 1978 में आज ही के दिन प्राण कृष्ण पारिजा पद्मभूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक का देहांत हुआ। तो ये था आज का इतिहास। और आइए कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाएं ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से।

सदियों कार्यक्रम के आखिर में आइए बात करें आज के इतिहास की। देखें आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुईं। आज ही के दिन 1999 में भूटान में टीवी प्रसारण की शुरुआत हुई। आज ही के दिन यानी 2 जून 2005 को भारत, रूस और चीन का व्लादिवोस्तोक सम्मेलन समाप्त हुआ। आज ही के दिन 2004 में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जेनिफर हॉकिंस मिस यूनिवर्स बनी। देखिए आज के दिन किन किन

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 6 बज चुके हैं, लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए। अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की भाषा का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हिंदी में 6:30 पर और राजस्थानी में 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल संध्या 7 बजे, जिसमें भारत भूषण बातचीत करेंगे लू से बचाव पर, वृक्षारोपण, धरती का श्रृंगार, पशुधन को तापघात से बचाएं, उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही आप सुनेंगे राजस्थानी लोकगीत और लोक भजन। फिल्मी भक्ति गीत आप सुनेंगे रात्रि 7:45 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम में एक ही फिल्म से होगा रात्रि 8 बजे। स्पोर्ट्स कैन यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। हिंदी में समाचार आप

सुनेंगे रात्रि 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात्रि 9 बजे और रात्रि 11:05। राजस्थानी लोकगीत और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। आपनों राजस्थान, ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 6:05 होने को हैं। इस समय आप सुना करते हैं सराय की भाषा का कार्यक्रम। आइए सराय की सुनें।

ए हई महक मलिक दा गाया गीत सिराइकी प्रोग्राम तुसां ऑल इंडिया रेडियो तू सुनदे पए हवे। ते हुण प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करके घरां को जुलदे हां। अपनी मित्र हरजीत कौर को इजाजत देवो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें, यही सही मायनों में विकास है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा और नए अवसर देकर उनका जीवन बदला है। श्रीमती मुर्मू ने देश में प्रतिभा की पहचान, पोषण और विकास के लिए सही मंच देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, खासतौर पर जनजातीय समुदायों के युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जोड़

0: और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सुल्तानपुर सहित 3 स्थानों पर 39,18,00,000 रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें इंडोर स्टेडियम, पुलिया निर्माण और बूढ़ाधीत के विकास कार्य शामिल हैं। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जून कर दी है। श्री बिरला ने कहा कि हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पर बैठा वह गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कंपटीशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या आप बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में, आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। सोशल मीडिया में श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान राज्य के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार अवसरों और खेल संस्कृति को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहन पर भी चर्चा की गई। साथ ही माय भारत के माध्यम से युवाओं को बढ़ावा देने संबंधी रूपरेखा पर भी विमर्श किया गया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इनकी सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य भर के पेट्रोल पंप डीलरों से संवाद भी किया। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के 3 दिनों के अंदर की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च और अप्रैल महीनों के बाद 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि लोगों को ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई गलतियों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति ले ली है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। CBI ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर पिछले महीने हुई नीट UG परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब ये परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की ओर से नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद शपथ ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ये नियुक्तियां की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी आभा आईडी बनाने में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इससे नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो रही है। आभा किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का डिजिटल माध्यम है। इस डिजिटल स्वास्थ्य पहचान से चिकित्सा की पारदर्शी सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित होती है। 14 अंकों की इस यूनिक हेल्थ आईडी से पुरानी बीमारी

0: दियो, लैब रिपोर्ट्स और दवाइयों का ब्यौरा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत ने बताया कि इसमें 14 मानकों पर जांच की जाएगी। इससे किसानों को खाद के सही उपयोग में सहायता मिलेगी। इस पहल से मिट्टी के पोषक तत्वों और सिंचाई जल की गुणवत्ता भी परखी जाएगी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में उधार के साथ ही फसलों की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। उधर भीलवाड़ा में भी खेत बचाओ अभियान के तहत किसान संगोष्ठी रखी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर में एक पटवारी अंकुश कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने खाते के विभाजन के एवज में 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और घूस की पहली किस्त के रूप में ये राशि ली थी। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न शहरी निकाय एक दूसरे की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां और नवाचार साझा करें। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता लाने के लिए नियमित कार्यशालाएं करने पर भी बल दिया। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 27 अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र चलाए जा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के बाद राज्य के ज्यादातर भागों में दिन और रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे मापा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। हालांकि अंधड़ और तेज हवाओं से कई जगह व्यापक नुकसान भी हुआ है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात आए अंधड़ से कई गांवों और ढाणियों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और ढाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग ने आज भी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कल और परसों कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की बढ़ोतरी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी रहने से अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत का अनुमान है। अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि कल चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नाकाबंदी प्वाइंट बनाए गए। इन पर 74,000 से ज्यादा वाहनों की जाँच की गई और 15,000 से अधिक चालान काटे गए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 कल नई दिल्ली में दिए जाएंगे। समारोह में देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कृत होने वाली पंचायतों के प्रमुख अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण भी देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वीरता और विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक

0: हीट वेव से राहत के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। सूर्य नगरी जोधपुर में बीते महीने भीषण गर्मी के बीच विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों के साथ सरकारी समारोहों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के जोधपुर दौरे और विकास से जुड़े समाचार भी खास रहे। जोधपुर शहर ने पिछले दिनों अपना 568वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना का समारोह बीएसएफ कैमल फ्रंटियर बैंड कार्यक्रम के साथ हुआ। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह का शुभारंभ विधायक अतुल भंसाली ने किया। इस दौरान मेहरानगढ़ में पर्यटकों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। तूर जी के झालरे पर दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया। मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में भी कार्यक्रम हुए। जोधपुर के रातानाड़ा सर्कल पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण समारोह रखा गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शरीक हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति की जनसेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों जोधपुर की कई रेलवे सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तारित किया गया। वहीं जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच बढ़ाए गए। जिला मुख्यालय पर 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले में शिरकत करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जोधपुर स्थित भगत की कोठी इलेक्ट्रिक लोको शेड देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। अप्रैल 2026 तक यहां से 181 इलेक्ट्रिक इंजन कमीशन किए गए। शेड से निकले इंजनों से उत्तर पश्चिम रेलवे की 80% यात्री ट्रेनें और 61% मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की ओर से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत फीच गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति तथा जैविक और कंपोस्ट खाद के महत्व की जानकारी दी। काजरी की ओर से ग्राम सोइत्रा में कृषक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज परिहार ने किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी आर चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र पुरस्कार मिला है। देश भर के 28 केंद्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान, उन्नत तकनीक विकास और तिल की 9 उन्नत किस्मों के विकास के आधार पर मंडोर को ये सम्मान दिया गया। जोधपुर रेल मंडल की ओर से आयोजित स्वच्छता कार्यक्रमों की बदौलत 10वें स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में उत्तर पश्चिम रेलवे ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। रेलवे बोर्ड के मूल्यांकन में उत्तर पूर्व रेलवे पहले और दक्षिण रेलवे तीसरे स्थान पर रहे। जोधपुर में मारवाड़ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा भोगी शैल परिक्रमा का आयोजन हुआ। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर ध्वज पूजन के साथ शुरू हुई परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत इन दिनों विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 5 जून तक चलने वाले अभियान के तहत जल सेवा, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल की महत्ता बताई जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में जिले के ओसिया में रिचार्ज शाफ्ट का लोकार्पण और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन शांति और कौमी भाईचारे की दुआ मांगी गई। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार।

खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,00,000 बत्ती आभा आई डी बनार देश में दूजा पायदान माथे पुग्यो। और प्रदेश में आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना रो फायदो लेवन वाला ने संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति कहो कि समाज रा सगला तबका रो माली तौर और भणाई लिखाई रा हलका

0: करोड़ 19 लाखों बत्ती आभा आई डी बनार देश में दूजा पायदान माथे पुग्यो और प्रदेश में आंधी बारिश के कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवानों ने देश की ताकत उम्मीद और उज्ज्वला भविष्य की निशानी बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना रो फायदो लेवन वाला ने संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति कहो कि समाज रा सगला तबका रो माली तौर और भणाई लिखाई रा हलका माए विकास असली बरकत है। श्रीमती मुर्मू कहो कि वजीफा री सरकारी योजनावा जनजातीय समुदाय रा नौजवाना ने आला दर्जा री भणाई लिखाई और मौका देर वानी जिंदगी माए बदलाव लाई है। वह देश माए प्रतिभा री पिछाण पोषण और विकास सारू सही मंच मुहैया करावन री जरूरत माथे जोर दीनो। राष्ट्रपति नौजवानों वानी जड़ाओं जुड़िया रहवन बाबत कहो।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा सुल्तानपुर समेत तीन ठोड़ा करीब 39 करोड़ 18 लाख रुपया खर्चों कराई चा विकास रा काम जनता ने सौंपया और नुआ कामारी शुरुआत कीनी। आम आए इंडोर स्टेडियम और पुलिया बनावन रा काम में शामिल है। ये मौके बिरला कहो कि सरकार किसाना ने हमारी उपज रा वाजिब दाम देरावन सारू खेतीबाड़ी आधारित उद्योगों ने बढ़ावो दे रही है। वह कहो कि सरकारी मोल माथे गेहूं री खरीदी री आखिरी तारीख ही 6 जून कर दी रिची है। श्री बिरला कहो कि हर रहवासी री मूलभूत जरूरतां पूरी करण सारू सरकार लगातार जतन कर रही है।
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पे बैठा वह गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कंपटीशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम पूर्ण होने की दिशा में, आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सागे मुलाकात कीनी। सोशल मीडिया रे जरिए मुख्यमंत्री बतायो कि मुलाकात रे दौरान राज्य में नौजवाना रा कौशल विकास नौकरी धंधा रा मौका और खेलना रा बारा में चर्चा करी जी। श्री शर्मा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सा गई चर्चा कर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जाओं जुड़ी जानकारी दीनी। प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रिपूर्ति सामान्य है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज राज्य में ईंधन रिपूर्ति व्यवस्था रो जायजो लीनो। इस दौरान वह प्रदेश रा पेट्रोल पंप डीलर सागे बातचीत कीनी। तेल कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो कि रसोई गैस री टंकियां बुकिंग रा 3 दिन में पुगाई जा रही है। वे बतायो कि मार्च और अप्रैल महीना पाछे 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर री बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग रा सचिव अम्बरीश कुमार कहो कि लोगों ने ईंधन रिपूर्ति रे बारे में चिंता करन री जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का न्यू लिरीजी परीक्षा री कॉपियां माए मिली गलतियां रा सत्यापन और कॉपियां ओजू जंचावन री अर्जी देवन सारू पोर्टल आज शुरू फेंक्यो। पोर्टल 6 जून ताई खुल्यो रहवेला। CBSE रे मुजब ओसु बीतो जहाँ चोड़ी कॉपियां ने प्रति ले चुके विद्यार्थियों सारू मुहैया कराई चियो है। दिल्ली री एक अदालत नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में आरोपित 5 जना ने जेल में बंद राखन री मियाद ई महीना री 15 तारीख ताई बधा देनी है। CBI ई मामला में हाल ताई 13 जना ने गिरफ्तार कीना है। ध्यान योग है कि पेपर लीक रा आरोपा पाछे लाड़ला महीना भी नीट UG परीक्षा रद्द कर दी रीजी ही जो 21 जून ने पाछी ली जावेला। मुख्य

0: न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट रा पांच नुआ जजाना पदरी शपथ दिराई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली सागे आला वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम री सिफारिश पाछे केंद्र री मंजूरियों शपथ दिराई ची। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी बनावण रा मामला में राजस्थान देश में दूजी ठोड़ माथे आ गयो है। राज्य में हाल ताई 7,19,00,000 बत्ती आभा आईडी बनाती रिची है। आभा आईडी किणी रहवासी रा स्वास्थ्य रो रिकॉर्ड हिफाजत उन राखण रो डिजिटल जरियो है। 14 अंक वाली ई यूनिक हेल्थ आईडी जूनी बीमारियां जांच रिपोर्ट और दवाइयां रो ब्यूरो राख्यो जावे है, जिणु जरूरत पड़िया डॉक्टर मरीज री स्वास्थ्य री लारली जानकारी आसानी हासिल कर सके है। केंद्र सरकार खेत बचाओ अभियान रा तहत जोधपुर रा कृषि विश्वविद्यालय में मिट्टी और पानी री जांच सारू प्रयोगशाला शुरू कीनी है। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत बतायो कि इनो मिट्टी रा पोषक तत्वों और पाणत सारू पानी री गुणवत्ता री परख करी जावेला, जिन री जांच रिपोर्ट मुजब किसानों ने वैज्ञानिक राय दी जावेला। 14 मानका माथे करी जावण वाली ई जांच किसानों ने सही तादाद में खाद लेवण में मदद मिलेला। खेत बचाओ अभियान रा तहत भीलवाड़ा में आई किसान गोष्ठी राखी ची। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर में एक पटवारी ने 50,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वहां माथे खाता रा बंटवारा री एवज में 1,00,000 रुपया री घूस लेवण और घूस री पहली किश्त रा तौर आ रकम लेवण रो आरोप है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी रा कामकाज रो जायजो लीनो। अहलकारा सागे मीटिंग में वे साफ सफाई रा काम में जनतारी भागीदारी ने मजबूत बनावन रा हुकम दीना। मुख्य सचिव कहो कि न्यारा न्यारा शहरी निकाया ने एक दूजा रा काम करन रा बेहतरीन तरीका और नुआ काम री जानकारी देवनी चाहिए। अरब मौसम राज्य रा घणखर हलका माए आंधी बारिश बीचे पारो सामान्य 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतर गयो है। अंधड़ और जोरदार बायरो बाजन रे कारण कई ठोणा नुकसान री शंका है। माणा जैसलमेर खबर नवीस बतायो कि वठे काल रात आया अंधड़ रे कारण कई ठोणा बिजली री पूर्ति ठप वेगी।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और ढाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग आज ही जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर संभाग रा कुछ हल्का माए बादणारी गाज सागे बिरखा भेवण और कठे कठे ओला पड़बा रा आसार जताया है। महकमारे मुजब काल और 4 जून नई बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे आंधी बारिश माए ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। इन दौरान कठे कठे तेज अंधड़ सागे बिरखा भेवण री संभावना है। मौसम महकमा रे मुजब आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवण रा आसार है। प्रदेश में अपराधां री रोकथाम, असामाजिक तत्वों माथे लगाम लगावण और यातायात नियमों री पालना तय करण सारू नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक वी के सिंह बतायो कि काल चलाई जिया ई अभियान रा तहत 74,032 गाड़ियां री जांच कर 15,002 चालान काटी चिया। देश री 42 बेहतरीन पंचायतों ने काल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 नवाजी चावेला। कार्यक्रम में 34 ग्राम पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय

0: पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार देर नवाजी जावेला। नवाजी जावन वाली पंचायतों की ओरों वारा कामकाज रा तरीका री जानकारी दी जावेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 सारू 31 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जियां दी जा सके है। ओ इनाम वीरता, विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला समेत न्यारा न्यारा हलका माए बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करने वाला बच्चा न दियो जावे है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4-8 जून ताई अहमदाबाद माए राखी जावेला। अमरीका रो योगा एथलीट दल ही इनमें शामिल भेला। अमरीकी योगा एसोसिएशन और USISF रा संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यों वाला अमरीकी दल री अगुवाई करेला। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड बीच मौजूदा सीरीज रो तीजो और आखिरी T20 मैच आज रात 11 बजे शुरू भेला। वो मैच इंग्लैंड रा टॉन्टन में भेला। भारत यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिक्स रा अर्धशतकां री बदौलत सीरीज रो पहलो मुकाबलो 38 रनु जीत्यो हो, जबकि दूजा मैच में इंग्लैंड ने 26 रनु जीत मिली ही। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवानों ने देश री ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद, पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,32 आभा आईडी बनार, देश में दूजा पायदान माथे पुग्यो। और प्रदेश में आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण श्रोता सुने अपना कार्यक्रम चौपाल भारत भूषण के साथ।

चौपाल कार्यक्रम सुनने सगळ्या परिवाराने भुरूभाई की घणी घणी राम राम, मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, दिनों दिन गर्मी आपके पूरे चरम पर है, लारे सी बिरखा के कारण की तापमान जी को है वो नीचे आयो, पर लू तो अब चाल सी। अरे लू में सब सुन जरूरी है सावधानी राखनो स्वास्थ्य की। अब खेतीबाड़ी को जी को काम है वो जानजर के जल्दी उठा, एर 11 बजे शू 10 बजे शू पहला पहला आपको काम सलटा आगे एर घर का नहीं हुआ। इनके अलावा विशेष तौर से ध्यान रखा अपने खाने पीने को, खाने पीनो जी को है वो ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक खावा, क्योंकि वो जी को गर्मी को समय हुआ है, इस समय अपनी जी की पाचन शक्ति है बा किसान भाइयों कमज़ोर हो जाए, तो ज़रूरी है कि पौष्टिक खानो लेवा और खाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाली जिया सलाद हो गयो, सब्जियां हैं मसालो कम खावा, तलेड़ो चिकनाई ए तो बिल्कुल ही इस समय के अंदर आपा ना लेवा। खाने पर आपा विशेष तौर से ध्यान रखा, सागे की सागे पानी जी को है वो साफ पियाँ, एर गड़ियालो जी को पानी हुए बिनी ठंडो मान के पियाँ आपा, क्योंकि बर्फ़ जी की है बिनी तासीर कठे न कठे गर्म हुए, तो बर्फ़ को कम से कम आपा उपयोग करा। दूसरो नंबर आवे कपड़ा को, इस समय सिर के ऊपर आपा बिया तो लगभग गाँव त्रो करा चाहे आपा कठे ही जावा, सूती कपड़ो सिर पर रखा, याद छू आप गए सिर के ऊपर।

को सूती कपड़ो है जगह ना पास आपो भी कमा वो बांध दे रखा ताकि लू को असर जल्दी जी को है वो सिर पर हुआ है। तो आप साफ है ना जी को है हमेशा आपके सागे रखा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सेवन करा। बाजार में वह पुड़िया वह ओ आर एस वाला वह भी ले आ गया आप सेवन कर सका। बिंग अलावा सबसे बढ़िया जी की आपने खाने पीने के माँ पानी वाली जी की चीज़ है आप राबड़ी को छा को सिकंजी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा और शरीर ने बीमार ना पड़न देवा। फिर भी जे कठे आप लगे जी उल्टी दस्त जिसी शिकायत हुए तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिला और इन तरीके से अपनी जी की गर्मी है वह बिल्कुल स्वस्थ रहता और इन लू को असर अपने ऊपर ना हुए। इन वास्ते आ सारी चीज़ों को आप विशेष तौर से ध्यान में रखा। आज आप कार्यक्रम में सुनांगा नाटक जरूरो गुलाम, लेखक है बीरू राम चावरिया और संयोजक है नवीन सिसोदिया। और पीछे पहला सुन लिया आप भजन।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुने भजन, आज सुना नाटक जरूर हो गुलाम।
3: ए सुने है के भगवान, तू चिंत्या करती अबे तो राजी है, आपने सुख ले रो ब्याई मंड गयो, मुकलावई हो गयो, एर घरे छम छम करती गोरसी बीनी आ गई। वाह रे मेरा सांवरा, कुणी शाने मिनक साची कही है, तेरे घरे देर है पण अंधेर कोनी। हूं तो मान गयो तेरी लीला ने सांवरा, मान गयो।
4: चिंत्या किसी सोरी सी दूर हो ये स्याणो, साल चार हो गया जूती तुड़ाता ने और ढंगसर रो टाबर ढूंढता ने, घणो ही फिर लिया बनठा कोनी के इनरी किस्मत आ गए कितनी मोटी पाल आड़ी जकी अब हटी है, और अपनो तो सांवरो राजी होयो है।
5: ए मऊ साची नी, ओ तो अपन कोई लुकेड़ो खजानो ही मिल गयो। छोरी ढूंढता ढूंढता मैं 25 ने पार कर गयो, मारा बेलीड़ा तो के नहीं लाग गया, सुखिया अदबूड तो गयो, ब्याह कौन करावे कहीं। मुँह उना ने कहीं जवाब देतो माऊ, मने तो घनी शरम आती बीटे में।
3: अरे सुकर मना तेरो ब्यावड़ो गयो, तेरे सागाड़ा तो आलता ही यही फिरे बुआली खानता, माँ बाप तियत्री माई फिर लिया, आलता ही रिश्ता रिजिया खाली है भला खाली है।
4: गुआड़ी सर रोटा बर आजकल मिले कठे तो मसा

0: ओ बापू बापू, मैं दोनों मेलो देखण जावा। माऊ ने तो पूछ लियो, पण बापू की रिपिया तो फिर चीजेगा नहीं मेले में।
1: जे तेरी माऊ कवे तो भला जाओ, मुंह क्या भी
0: हाँ
1: मना करूं, पण मेले में सावधानी राख्या।
0: हाँ
1: यार देखी भला बक्स्यू करे आ जाया।
0: हाँ बिल्कुल
1: ए ए ए ले रिपिया,
0: बापू।
1: सावड़ गोजी में ही गाल ली,
0: हाँ
1: बठे गोजी साफ करनिया गणाई हुए।
0: ठीक है बापू, बात तो थारी सही है। ए सुने कहीं,
1: हाँ
0: आपा मेलो देखन चाल सा, बठे लड़ी डोलर इंडो, भांत भांतरा नाच गान सर्कस हर घणो ही क्यों हुए। ए मेरी छमकली, अब तो बस बेगी सी तैयार हो जा। माऊ बाबे तो आपने छूट दे दी नी, अबे तो तेरी ढील है, बेगी कर जान खातर टेम्पुड़ो होरन बजान लाग रही है। सुने कोनी के देख देख इन्हें देख, अरे मेलो कितो जोर को भरी जड़ो है। ओ हो, मिनखारी कितनी भीड़ है, रुल ना जाई तू कठई, मेरे कन्ने रही, ले ले मेरो हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, भीड़ कितनी है। तो
1: देखो देखो देखो कितनी भीड़ है। हूं तो फिर लिखना ही सो मेरे को देखियो नी, मन तो बहुत ही अच्छो लगे। टब्बर लुगाइया और आदमी नावड़े
0: अरे
1: कोनी।
0: नावड़े के तो मेलो है गुंगली, देख वो डॉलर हिंडो है, वो
1: हाँ
0: देख कितना ऊंचो है
1: ओ देखो
0: डॉलर हिंडे पर। तू हिंड सी के है,
1: हाँ बहुत ऊंचो है। हूँ देख कुंजना खार जो सुनिश्चर पड़े। ओ राम,
0: तो
1: इन पर तो पालनिया सा न्यारा ही बनेड़ा है,
0: और के तो
1: लोग ही बैठे नी।
0: बेकी सी तो लोग तो
1: आपा कौन सा हिट्टी गिरा हिंडलिया नी।
0: जे डर ना लगे नी तो डॉलर हिंडो हिंडी, कई लोगारो तो ऊंचो जार हाल खराब हुजे। तू तो अपने गापाई नुआ पेर गाई है, इतनी दुनिया माई कठे और की रमाण ना कर बेटी मेरी, सरवरी तू तोड़ी करा ला कली पछे।
1: ओ थारे साथ मने क्या रोड रे,
0: हाँ
1: ब्लैंकी उजे डॉलर इंडो तो लाज में इंडू ली। मरे गांव वाले पिंपड़ा माथे गणी उबली मचाई
0: अरे
1: है।
0: गांव वाली बात छोड़, तू पहला कनाई डॉलर हिंडे माथे हिंडी कहीं बता, जको तने डर को लगे नी मेले पहला आई के तू कदी।
1: ना भाई, पहला कनाई ना तो इंडा लिया और ना ही मेलाई, थे तो आया उसो।
0: मैं तो आप कढ़ाई को नहीं आया ली, पर सुन हिंडो ऊपर जासी नहीं जना, या या शेर को सो चढ़ जीसी, आपा आपा के कर शा, आपा आंखे मीच ले शा, और नीचे को देखा नहीं है।
1: हाँ चंगा फिर
0: हाँ
1: टिकट ले आओ,
0: हाँ
1: चलना बिग्गा सा इंडा माई बैठा।
0: हाँ हाँ इंड शा ये देख ये
1: सीटा
0: सीटा।
1: रुदीज ले ली,
0: हाँ
1: कोई कोई खाली है बस।
0: हाँ वाह भाई वाह, हिंडा तो घड़ा ही लिया, अबे नीचे उतर जा है। डॉलर हिंडो ऊपर ने गयो नी जन, तू बेली बेली हुई, मैं तो ने देखियो तू डरे ही के।
1: इकर तो हालत से खराब हो गई,
0: अली
1: पच्चे मुंह तगड़ी जाड़ा बेच ली और आंखें मिचली नी, गुरड़ी छाती कर हिंडे पर बैठी रही, काजू धक धक करे हो।
0: तो सच्ची बताऊं मैं तेरा हिंडो तो ऊपर गयो नी, तो यार ने तो आंख मीच ली और जोर से पकड़ लियो, शेर को तो चढ़ियो, पर एक बात बताऊं के मुझे बहुत आयो।
1: हाँ वो देखियो, अभी आप मेला में क्या क्या चीजें देख शां, अठे तो इतनी चीजें हैं, बस देखी जाओ
0: अरे तो
1: कोई अंत ही नहीं है।
0: ओ मेड़ो है अठे तो ये चाल सी, अब बिन्ने चाल आपने ये मारवाड़ी गीत चले नी, बिन्ने चाल श्या और सागे जी का काल बेलिया नाचे नी, बांगो डांस देखांगा ओ कमाल हो वे देखो।
1: हाँ देखो देखो देखो किणत्रिया दोलड़ी और नाचन लाग रही है,
0: तो
1: किणत्रिया लग गए जिया कर तू मैं सिपरिंगा लेडो है जाने, रबड़ की सी गुड्डी नाचन लाग रही है जाने।
0: तेरो जी करे के नाचन को है,
1: ना ना ना
0: आरो तो नाचन गावन रो काम है गुंगली।

0: पण छोरी तो कमाल कर दी, जमी पर पड़ियो रिपियो आंसु चकलियो आज पछे मैं के करियो तो देखियो नी 10 बार नोट चलाए मारियो है।
1: अब थे माने इया बताओ मेले मयूर काई दिखासियो, भूख ही जोरों की लग रही है और थक सी भी गई हूं।
0: मेले माई तो घणो ही की देखने, देख बोकरो भलई फिंचारो बड़ कढ़ा बोकरो भलई फिर बोकरो मेड़ो है वो।
1: कोई डबलिए माई चलना नहीं, किंचर कामर की भी कर लियांगा, आया जदरा की है डफा चढ़िया फिर मेरी तो देखो फिंचा भी दुखन लाग।
0: तो ज्यादा मैंने पोगरा ना घर से आई जना रोट चार पाड़ गई तू, अब बार इतनी बेगी तू भूखी होगी तने भूख ही लागगी। चल पण कोई और मोटी मांग ना कर ले, हूं खबरदार करू तने पहला ही।
1: ओरे ते कितरा अच्छा हो, हूं तो कहूं नांता गो थारो बाली बांक को ना होए, पण मेरो के हो तो मानता रे शनी, बताओ तो श्री चुप किया रे गया।
0: हूं सो की समझू, ए लपोसा जिगा तू लगाण लाग रही है नी, ए हूं से की जानू समझी के
1: हंबे साथ थी बतावानी सर्कस लाग रही है अपन देखन चाल छानी।
2: मुकना ही सर्कस कौन देखी नी ठेके मानी, कभी मैं हाथी शेर और दूजा जानवर खेल दिखावे।
0: अरे गुगड़ी सर्कस देखन री कई बात है, तू कवे तो चांदड़ लो तोड़ लिया दियूं, पण एक दिक्कत है।
2: कहीं हो
0: गांव जानने मोड़ो जैसी आपने माऊ बाबो रोड़ा करसी, पछे तू दोरी दोरी होती फिर सी।
2: बे तू रोला सदा ही करता रेवे, बने थे समझा दियो नी अच्छा कौन लागे इन त्रिया करता, नी तो दूरा दरिया दियूं लिया, मेरो नाम सुरली है। हाँ
3: बर्तन तू मंजन लाग रही है, बिल्डिंग कहीं करे ब्याई जे राई वो दिन आज रो दिन एक जिशोई है, सुख देन वाली जिगियां तो बेली लगे, करबो करो खोरसो इनरागी, अब नौकरानी बन कमाओ बीननी आ गए।
4: बीननी तो ना धोर पट्टा पाड़ टेलीविजन देखन लाग रही है, और बा काई करे, एक ही तो काम है उंडरो, चाकरी करने आपा आनी चाहे जे तो कर लियो नहीं तो पड़े हुए।
0: ए माऊ माऊ तेरो काई लेवे तो बिने टेलीविजन देखन देनी, अकली तो आवे टेलीविजन।
3: हाँ अकली लेवे, सुन ले सपूतरी बातां, मने तो वह अकली ओड़ी आई लगी, जना ही दूरा दरिया देन लाग रही है, एर सुखला तू कट सी आई ए हाथ क्या मैं करे खड़े रह।
4: ओ कहीं करन लाग रही है, मुंह बताऊं पशुआरो गोबर नाख तो आए वे, सुन लो
3: गोबर नाखन लाग रहे है, नो बजन लाग रहे तो बीननी काई काम करियो।
0: हूँ अबार गोबर नाखन लाग रही हूँ तो काई हो गयो बापू, थे दिन उगण सु पहली नाख देन था, हैर हूँ इन भगत नाखन लाग रही हूँ, फर्क तो खाली इतो ये क्यों मऊ।
3: चुप रह कि थोड़ो गणो काम कर रो, बीननी नहीं कह दिया कर बेटी रा बाप। ओ ना कवे तो सुखलेरी मऊ, तू ही कैर काम करवा लिया कर, इन्ने ज्यादा सिर ना चढ़ाओ।
4: बीननी ए बीननी ए पड़िया भांडा बर्तन आ सगला ने मांजर साफ कर ले, पड़िया बूंडा लागे।
0: माऊ ए माऊ बिन क्या परेशान करे तू बापड़ी ने, तू मांज लेनी की ताक तो बर्तने बिंगा हाथ की मेहंदी उतर जाएगी। माऊ
3: हद कर दी अण तो, वो तो जोरूरो गुलाम हो गयो, अपन ने अण तो खुआ दी कमाई, आलतानी तो ब्याह ने 6 महीना ही होया है, इन तरह किया पार पड़सी। मऊ तू मांज लेनी बर्तन।
0: बापू मैं तो बर्तन मांजन रो मऊ ने कहो है, थे सगड़ा बर्तन आप ही मांजता नहीं पहला, अब के दिक्कत होगी थारे।
4: तू सुखिया बोल ना, चुप रह, घर रो काम ना करे तो ना करन दियो, आप कमाया कामना की न देवे दोष, इने मुँह सिर चढ़ाली, ओ देखो बाप की पोल खोले।
3: बस कर अब रोड़ा ना कर, सुन दे पाड़िया भैंसा रे साथ ही बंदे रहे, उन्होंने अड़गा बांध दियो नी तो भैंसा रो सो दू चू जावेला, आजकल पड़ियो कठे आकड़ा।

0: देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनियो नाटक जरूरो गुलाम। किसान भाइयों आपा ताप घात की बात करी आपने मिन खां वास्ते सागी की सागी जी की जरूरत है अपन सावधान नहीं रखेंगी बाय आपने डांगरा वास्ते भी क्योंकि जी तरीके से आपने शरीर ने ताप घात हुए भी हिसाब से ही आपने जी का डांगर है पशु है दुधारू पशु है चाहे बाखड़ा है बने ताप घात से बचाना बहुत ही जरूरी है। तो वो सागी नीम आपा आँ पर भी लगाना है सुबह जल्दी आने खोला जठे भी बंद आ बठे छियादार जिगियाँ होनी चाहिए छपरो आपन जठे भी बनावा बठे उत्तर शून दक्षिण का नहीं जिको छपरो है वो बनाना चाहिए और छपरे की जी की छात है वह कोशिश करा कि थोड़ी ऊंची लगावा ताकि छपरो जिको है वो हवादार बने रहे। हरियो चारो जिको आपन देना है बाई बात पानी आलो देना है और पानी हमेशा स्वच्छ और थोड़ो ठंडो पियावा और दिन में कोशिश करा कि दो बिरिया पशु ने आप नुआ भी देवा ताकि पशु जी को है वो गर्मी ना मनावे और शरीर के अंदर की जी की गर्मी है वा पानी आड़ो जी को भोजन देंगा बिना हरियो चारो देशा तो बिंग में विशेष तौर से आप ध्यान रखा कि पौष्टिक भोजन देवा और हरियो देवा तो जी को रसदार हरियो वे वो आप खुआवा। बिंग अलावा नीचे की जी की जिगियाँ हैं बा साफ सुथरी रखा ताकि बिंग भूमि से कोई बीमारी ना लगे। बांधन की जिगियाँ हमेशा छायादार होनी चाहिए छपरे गए करने जे वृक्षदार जिगियाँ हुए तो बैठे आप खोल के बिना नीचे धूप में जिया दिन के अंदर बांध सका नहीं तो आप छपरे के माँ 10-11 बजे पशु ने पुटो बांध दिया तो ए बचाव आप रखा। फिर भी जे पशु थोड़ो घणो आप लगे कि भई जुगाड़ी कौन करन लाग रहे हो या पाचन तंत्र जी को है वो बिंगो खराब हो रखे है सही हरे चारो कौन खाण लाग रहे हो तो नज़दीक में जी को भी डॉक्टर है पीछू आप सलाह लेवा और बिंगो उपचार करावा। सुन लें एक और गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनो गीत आपने तई बाजार भाव पुगता है आज सुरतगढ़ मंडी में कणक बिकी है 2350 नीचे में और ऊपर में 2621 रुपया जो बिक्यो है 2121 रुपया और चीने का भाव रहा 5300 शू लेगे और 5400 रुपया तई सरसों नीचे में बिकी 7181 रुपया और ऊपर में 7337 रुपया ग्वार बिक्यो 5451 लेगे 5604 रुपया तई। गंगानगर मंडी के माँ आज कणक का भाव रहा 2372 नीचे में और ऊपर में 2481 रुपया चीनो बिक्यो 5200 लेगे 5625 रुपया तय सरसों बिकी 7170 लेगे 7974 रुपया तय ग्वार बिक्यो 5250 लेगे 5585 रुपया जौ का भाव रहा 2150 नीचे में और ऊपर में 2345 रुपया। सुन ले एक और गीत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए फिल्मी भक्ति गीतों में सबसे पहले सुनिए राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत रचना और संगीत रविंद्र जैन का।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने, जूली फिल्म से आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत राजेश रोशन का।

आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुने दाता फिल्म से, महेंद्र कपूर, साधना शलगम, सुरेश पाटकर और साथियों की आवाजों में। गीत के बोल अनजान के संगीत।

अभी आप फिल्मी भक्ति गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनिए।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर साहब को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और आज के इस एक ही फिल्म से कार्यक्रम में उनकी अभिनीत फिल्म से उन्हें श्रद्धांजलि दें।

राज कपूर साहब, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ। इन्हें शोमैन, भारतीय सिनेमा का महान शोमैन, भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन कहा जाता है। राज कपूर साहब एक प्रसिद्ध अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी थे। अपनी शुरुआती फिल्मों में इन्होंने प्रेम कहानियों को मादक अंदाज से पर्दे पर पेश किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए जो रास्ता तय किया, इस पर उनके बाद कई फिल्मकार चले। उनकी खास फिल्मों में शामिल थी श्री 420, जिसे हमने आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम के लिए चयन किया है। इस फिल्म में बम्बई की जो मूल तस्वीर है, उसे पेश किया गया। यह फिल्म निर्माताओं को अभी भी आकर्षित करती है। राज कपूर साहब की फिल्मों की कहानियाँ आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी। अपनी ज़्यादातर फिल्मों में वे स्वयं नायक के रूप में होते थे। बहरहाल, हमारी आज की फिल्म श्री 420 का एक और गीत हम आपको सुनवाएं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे। गीत के बोल शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

हमारी आज की फिल्म श्री 420। और इस फिल्म का चयन करने का एक उद्देश्य ये कि आज महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर साहब की पुण्यतिथि है। हम आज के इस कार्यक्रम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राज कपूर साहब 1935 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में फिल्मों में काम करना इन्होंने शुरू किया। पहली फिल्म इनकलाब में आपने अभिनय किया। उस समय वे बॉम्बे टाकी स्टूडियो में सहायक या हेल्पर का काम करते थे। बाद में केदार शर्मा के साथ क्लैपर बॉय का कार्य करने लगे। कुछ लोगों का यह मानना था कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं था कि राज कपूर कुछ विशेष कार्य कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे सहायक बॉय जैसे काम पर लगवा दिया। लेकिन जो केदार जी थे, जो एक महान निर्माता निर्देशक थे, उन्हें यह विश्वास था कि राज कपूर साहब के अंदर एक बेहतरीन कलाकार छिपा हुआ है। और उन्होंने कहा था कि एक समय होगा जब राज कपूर साहब को पृथ्वीराज कपूर के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि पृथ्वीराज कपूर

कपूर साहब को राज कपूर के पिता के रूप में जाना जाएगा और उन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल भी किया। प्रसिद्ध निर्देशक केदार शर्मा ने राज कपूर की अभिनय क्षमता को देखकर उन्होंने 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में उन्हें नायक की भूमिका दी। बहरहाल, हमारी आज की फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवाएं।

अभी आपने लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत सुना। बात कर रहे थे हम राज कपूर साहब की, तो नायक के रूप में राज कपूर साहब का फिल्मी सफ़र हिंदी सिनेमा की वीनस मानी जाने वाली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला के साथ प्रारंभ हुआ। 1946 में प्रदर्शित केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल और मोहन सिन्हा के निर्देशन में बनी चित्तौड़ विजय और दिल की रानी जैसी फिल्मों ने मधुबाला के साथ राज कपूर की पहचान बनाई। नरगिस के अलावा मधुबाला के साथ ही राज कपूर साहब ने सबसे अधिक फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में सबसे अधिक सफल फिल्म रही नीलकमल, और अन्य फिल्में इतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। 1948 में प्रदर्शित फिल्म आग वो फिल्म थी जिसमें अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में स्वयं राज कपूर साहब ने काम किया। हालांकि ये फिल्म भी इतनी सफल नहीं हो पाई। और उसके बाद 1949 में आई राज कपूर साहब की फिल्म बरसात में अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में वो पुनः आए, और इस फिल्म ने सफलता के नए मापदंड तय किए। इन्होंने इस फिल्म से ये साबित कर दिया कि प्रतिभा में इनका कोई मुकाबला नहीं है। इस फिल्म की पूरी टीम में संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र थे। इस फिल्म की सफलता ने राज कपूर साहब को बुलंदियों के नए मुकाम पे पहुंचाया। बहरहाल हमारी आज की फिल्म श्री 420 का एक और गीत आपको सुनवाएं, आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में।

राज कपूर साहब को 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1960 में आई फिल्म अनाड़ी के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जिस देश में गंगा बहती है उसके लिए 1962 के फिल्मफेयर पुरस्कार में भी उन्हें नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संपादक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार उन्हें संगम फिल्म के लिए 1965 में प्रदान किया गया। 1972 के फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए निर्देशक के रूप में मेरा नाम जोकर के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। 1983 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और संपादन का पुरस्कार प्रेम रोग फिल्म के लिए उन्हें मिला। इसी तरह से 1986 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राम तेरी गंगा मैली और संपादक का पुरस्कार भी राम तेरी गंगा मैली के लिए राज कपूर साहब को प्रदान किया गया। राज कपूर साहब की अनेक फिल्में थीं जिसमें प्रसिद्ध फिल्मों में मेरा नाम जोकर, सपनों का सौदागर, दीवाना, तीसरी कसम, संगम, श्री 420, दिल के अफसाने, नजराना, अनाड़ी जैसी अनेक फिल्में थीं जिनमें उन्होंने अद्भुत अभिनय का परिचय दिया। और आज ही के दिन यानी 2 जून 1988 को राज कपूर साहब हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इसी गीत के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसाकरोनन तथा एमआर अर्जुन ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी नेशंस कप के लिए किया टीम का ऐलान, सलीमा टेटे को सौंपी टीम की कमान। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक महिला टी20 मुकाबला आज टॉन्टन में। महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना भूटान से और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डेमोलिनर पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी पीवी सिंधु और मेंस डबल्स की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसाकरोनन और एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आइए जानते हैं प्रतियोगिता के पहले दिन कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आज लगातार सेटों में जीत हासिल करके टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। सिंधु ने इस सुपर 1000 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के मैच में थाईलैंड की बुसानन ओंगबांग रुंगफॉन को 25-23, 21-16 से पराजित किया। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसाकरोनन और एमआर अर्जुन ने मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और वी क्योंग पर 21-18, 21-10 की जीत के साथ दूसरे दौर में प्रवेश किया। मालविका बंसोड़ पहले दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उन्हें थाईलैंड की सातवीं वरीयता प्राप्त पोर्णपावी चोचू वोंग ने हराया, जबकि महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को इंडोनेशिया की फ्रेबियाना द्वीपूजी कुसुमा और मेलेसा त्रियास पुष्पी तासारी से हार का सामना करना पड़ा। किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में जापान के युशी तनाका से 19-21, 15-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वहीं लक्ष्य सेन भी इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से हारकर बाहर हो गए। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भी चीन के चेन फांगहुई और गुआ शिनवा की जोड़ी से हारकर बाहर हो गए। अब भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की निगाहें सिंगापुर ओपन जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर होगी, जो कल से प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।

0: एक तरफ जहां हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी ने, मेंस डबल्स जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और कल भी भारत की मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मैदान पे आएंगे, जहां उन्होंने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब सीधे रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां नेशंस कप के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। हॉकी इंडिया ने एफआईएच हॉकी वुमेन्स नेशंस कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ये टूर्नामेंट 15 से 21 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा। एक नजर खिलाड़ियों पर।
1: विमेन्स नेशंस कप के लिए टीम की कमान सलीमा टेटे को दी गई है, जबकि सविता और बीचू देवी खारीबाम को गोलकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। डिफेंस में सुशीला चानू पुखराम बम, इशिका चौधरी, निकी प्रधान और ज्योति बैकलाइन में अपना इंटरनेशनल अनुभव लेकर आई हैं। उनके साथ लालथंत लुआंगी और शिल्पी डबास भी होंगी। सलीमा टेटे, नेहा, सुनीता टोप्पो, साक्षी राणा, दीपिका सोरेंग, सोनम, लालरेम सियामी मिडफील्ड में अपना दमखम दिखाएंगी, जबकि नवनीत कौर, दीपिका, ऋतुजा दादासो पिसल, इशिका और अन्नु फॉरवर्ड की भूमिका में नजर आएंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये नेशंस कप इस साल होने वाले महिला विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मीरा एंड्रीवा ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एंड्रीवा ने आज रोमानिया की सोरेना क्रिस्टी को 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। मीरा ने दूसरी बार महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इसी वर्ग में आर्याना सबालेंका ने नाओमी ओसाका को 7-5, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं कल हुए मुकाबले में मार्टियो अर्नाल्डी ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की, और एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डेमोलिनर ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
2: फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी एन श्रीराम बालाजी और उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर ने प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस जोड़ी ने कल रोला गैरा में बड़ा उलटफेर करते हुए छठी वरीयता प्राप्त जर्मन जोड़ी केविन क्रावियेट्स और टिम पुएट्स के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 7-5, 6-4 से जीत दर्ज की। इंडो ब्राजीलियन जोड़ी ने संयमित प्रदर्शन करते हुए क्ले कोर्ट के इस बड़े टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर फाइनल मैच 1 घंटे 25 मिनट में जीता। इसके साथ ही बालाजी और डेमोलिनर दोनों ने ग्रैंड स्लैम में पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। ये टूर्नामेंट में उनकी लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने दूसरे दौर में जर्मनी के जैकब फ्लाइटर और मार्क वॉलनर पर 7-5, 6-2 से शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि पुरुष डबल्स प्रतियोगिता में भारत को कुछ झटके भी लगे। भारत के यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस को दूसरे दौर में अनुभवी सिमोन बोलेली और एंड्रिया वारससोरी के हाथों 3-6, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। भांबरी और वीनस ने अपने अभियान की शुरुआत मजबूती से की थी। इस जोड़ी ने पहले दौर में अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंजोलो और मारियानो केस्टेलबोइम पर 7-5, 6-2 से जीत दर्ज की थी। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला राफेल जोडार से जारी है, और जेकब मैसिक का मुकाबला जोआओ फोंसेका से होगा। अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स लगभग 4 वर्ष तक खेल से दूर रहने के बाद 44 साल की उम्र में आगामी क्वींस क्लब टूर्नामेंट से पेशेवर टेनिस में वापसी करेंगी। 23 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन सेरेना इस ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट में डबल्स वर्ग के जरिए प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगी। और अब बात शतरंज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करके खिताब की उम्मीदों को जीवित रखा है। विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने ओपन वर्ग में महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जबकि दिव्या देशमुख ने महिला वर्ग में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराया।
3: प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त वापसी करते हुए अपने अपने मुकाबले जीते। गुकेश ने अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो के साथ मुकाबले में 1.5 अंक हासिल किए। उन्होंने क्लासिकल बाजी में मौका गंवाने के बाद आर्मागेडन टाई ब्रेक में जीत हासिल करके अपना कुल स्कोर 8 अंक पर पहुंचाया। वो हालांकि 6 खिलाड़ियों के डबल राउंड रॉबिन तालिका में सबसे निचले स्थान पर हैं। प्रज्ञानंदा ने फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा को लगातार दूसरी बार क्लासिकल बाजी में हरा कर पूरे 3 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में उनके अब 9 अंक हो गए हैं। प्रज्ञानंदा इसके बावजूद 5वें जबकि गुकेश 6ठे स्थान पर

0: हुए हैं। इस टूर्नामेंट में अभी 3 दौर की बाजियां खेली जानी बाकी हैं और भारतीय खिलाड़ियों के पास वापसी कर शीर्ष पर पहुंचने का मौका है। वेस्ली 112.5 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि अलीरेजा 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानंदा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और जर्मनी के विंसेंट कीमर सभी समान 9 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं। दिव्या ने हम्पी को आर्मगेडन टाई ब्रेक में हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अगले दौर में दिव्या का मुकाबला शीर्ष पर चल रही बिबिसारा असोबायेवा से होगा। इस मुकाबले को जीतकर दिव्या बढ़त हासिल करना चाहेंगी। असोबायेवा ने हालांकि अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए क्लासिकल बाजी में चीन की झू जिनर को हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। उनके अब 12.5 अंक हैं, दिव्या के 10 अंक हैं। इससे पहले छठे दौर में चारों भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा था। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब रुख कर लेते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर, जहां कल भारत का अहम मुकाबला खेला जाना है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम कल सेमीफाइनल में भूटान के खिलाफ खेलेंगी। ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की निगाहें खिताबी मुकाबले में जगह बनाने पर लगी होंगी। भारतीय टीम 2 मैच में 6 अंक के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर रही, जिसमें उन्होंने मालदीव पर 11-0 की जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया। और बात अब महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। भारत ने यास्तिका भाटिया और जेमिमा रॉड्रिक्स के अर्धशतकों की बदौलत श्रृंखला का पहला मैच 38 रन से जीता था। वहीं दूसरे मैच में कैम्प्स के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने वापसी कर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर लिया था। ये श्रृंखला 12 जून से शुरू हो रहे T20 विश्व कप के नजर बेहद अहम है। वहीं पूर्व भारतीय लेग स्पिनर साईराज बहुतुले को आज पुरुष राष्ट्रीय टीम का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया, जो पहले देश के अंडर 19 और भारत के ए टीम के साथ काम कर चुके हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक खास खिलाड़ी के बारे में जानने का, जिसने इस बात को साबित किया कि प्रतिभा किसी उम्र, साधन या बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। जब हौसलों में उड़ान हो और बाजुओं में दम, तो राह की हर बाधा खुद ब खुद छोटी हो जाती है। इस पुरानी कहावत को शत प्रतिशत सच साबित कर दिखाया है देश के एक ऐसे उभरते सितारे ने, जिसने अपनी जादुई बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्ती जिले के एक छोटे से कस्बे ताजपुर से निकले महज 15 वर्षीय युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी की। जी हाँ, वही वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने आईपीएल 2026 के मंच पर राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनकर जब मैदान पर कदम रखा तो इतिहास खुद ब खुद लिखा जाने लगा।
2: An absolutely remarkable season for Vaibhav Suryavanshi.
3: IPL 2026 का खिताब भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किया हो, लेकिन इस सीजन को वैभव सूर्यवंशी के दमदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। वैभव 15 साल की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। IPL 2026 में वैभव ने अपनी तूफानी और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से ये साबित करके दिखाया कि पिछले साल का प्रदर्शन कोई तुक्का नहीं था। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने आईपीएल में खेले 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। वैभव ने इस सीजन में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए। आईपीएल में वैभव ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की और हर गेंद को सिर्फ बाउंड्री के पार पहुंचाने की होड़ में नहीं रहे। उन्होंने मुश्किल हालातों में राजस्थान रॉयल्स की लड़खड़ाती हुई पारी को कई बार संभाला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में देखने को मिला। वैभव ने दूसरे क्वालिफायर 47 गेंद में 96 रन की दमदार पारी खेली। कागिसुर रबाडा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से लेकर तमाम दिग्गज तेज गेंदबाजों ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ अलग अलग तरीकों से गेंदबाजी की, लेकिन वैभव ने न सिर्फ हर किसी का डट कर सामना किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया। बुमराह के खिलाफ पहली ही गेंद पर लगाया गया उनका छक्का शायद इस सीजन की उनकी सबसे अच्छी यादों में से एक रहेगा। वैभव ने ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड अपने नाम किया।
2: 776 runs in only his second season, his first full season in the Tara IPL. Vaibhav Suryavanshi gets the orange cap. 72 sixes hit this year. The emerging player, super

0: स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी।
1: वैभव ने इस आईपीएल में कुल 72 छक्के लगाए, जो एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं।
0: Goes full, the ball goes longer. This is massive. You might say it's just Suryavanshi doing Suryavanshi things. Straight back down the ground again. He's putting on a show, this young man, Vaibhav Suryavanshi. Straight up, but this time the fielder at cover is the one who's watching. That's the biggest of them all, and you thought you'd seen it all. This is third tier.
1: वैभव आईपीएल में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज भी बने। वे पावर प्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्होंने डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 12 छक्के लगाए और 16 गेंद में अर्धशतक लगाते हुए आईपीएल प्ले ऑफ में संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
2: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें sportscan की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और sportscan की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं।
4: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
5: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा

0: संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
3: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधान

0: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है।

0: प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला

क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

घणो ताई आयो ऐं कन्या मुन्या कुर्ज जेको आहे उहो गीत सुञाती वियो बिल्कुलु सां कार्यक्रम ते सुनो थारी पसंदि को गीत बि आपां सुञाशां सीमा मिश्रा जी आवाज़ में बि गीत सुञाशां ऐं कई आपणा जेका बेली साथी लिखिया आहे की कोई लोक कलाकार जी आवाज़ में गीत सुणो कोई बि गीत सुणो त उहे बि सुञाशां कार्यक्रम ते सुनता रहो हंसणी माण्हू खे वेझो की खणो खाती टाइम जेकी घर्षूं वञी बाप खे घर न कए घरड़ो कहे की भई रोटी दे और रोटी मांगे तो बाक़ी भाई रोटी तो ख़तम होगी तो घरड़ो कहे भी कि रोटी खत्म होगी क्या बीह खत्म होगी जी थे कल मन साढ़े तीन राति टाइम थारा पीछा खत्म हो गया नी बीह रोटी भी खत्म होगी बिल्कुल सच्ची बात है सा भाई देखो घर दिराणी ने क्या जरूरत की चीज़ें जी सगली दिराणी पड़े और देखो सा संदेश अपने तय पुग्यो सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव को लिखे अभी कार्यक्रम जी को मैंने घणो चोखो लगे गीत भजन पसंद आवे गांव बणवंता हनवंता फाजिलका छू पंजाब छू विनोद मायल सीमा लक्षिता यसिका माता जी विद्या देवी और सगले मायल परिवार लिखे अभी कार्यक्रम में सुन लग रहे चंपा में थी आवाज़ में कोई गीत सुनो बिल्कुल सा जरूर कोशिश कर चंपा में थी आवाज़ में भी गीत सुनाशा थे कार्यक्रम सुनता रहो एट तेलंगाना निजामाबाद छू शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना दानिश आसिफ शेख लिखा भी कार्यक्रम जो मैंने घणो चोखो लगे गीत भजन पसंद आवे जलालाबाद वैष्णो सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी निमित आहूजा को संदेशों पुग्यो बिलाई छत्तीसगढ़ छू रशन लाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिम्पल देवांगन को संदेशों अपने तय पुगतो हुए और गाँव पीपर लोड सरगाँव छत्तीसगढ़ छू दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा को संदेशों पुग्यो सा बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश हूँ विनोद मुणत नेहा जैन दीपक मयंक मुणत चेतन नाटा दीक्षा कुश मुणत को भी संदेशों अपने तय पुग्या कि कार्यक्रम मैंने घणो दाया वैसा संदेशों पुग्यो सा अपने तय गांव जोगीवाड़ा गंगानगर छू प्रेम सारण मोनिका हैर मनीष सारण को ए भी लिखा अभी कार्यक्रम मैंने चोखो लगे गीत भजन दाया वै बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा शेरवानी स्कूल गज टुडवारा उत्तर प्रदेश हूँ आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी को भी संदेश अपने तय पुगतो हुए सा नारगोड़ा छत्तीसगढ़ छू सीमा मिश्रा की आवाज़ में कोई गीत सुनना चाहे और संदेशों लिखकर भेजो महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी लिखा भी कार्यक्रम माना घणो दाय आवे गीत भजन पसंद आवे गोपालगढ़ राजस्थान छू धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान छिपा और पूजा परिहार को भी संदेशों अपने तय पुगतो गयो सा एर दो चार कागदी और शामिल कर लें आप चाहते हैं थारी पसंद को गीत सुनावा धौलपुरा गंगानगर सिंह शोलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित हेमंत एर अंजू गोदारा को संदेशों पुग्यो सा एर डब्वाली हरियाणा सिंह जेके बाकोलिया सुनीता बकोलिया संजय अनिल एर मीनू बाकोलिया अलीका डब्वाली सिंह बसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी को कागज पुग्यो बठिंडा रोड डब्वाली सिंह राजेंद्र नारंग अंजू नारंग और मोहित नारंग को कागज अपने तय पुगतो हुए कनेरा मोहल्ला सिंह पटियाला शू बत्ता परिवार अपन है कागज मांडा मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक कर्ण गीतू निहारिका एरवंश बत्ता मलोट कैंप पंजाब शू सतीश मिगलानी सीमा अनमोल धर्मपाल वीर सिंह लाठी लखविंद्र संधु महावीर संधु गुरचरण ग्रोवर रमेश मिगलानी प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दीपेंद्र वरिंद्र सिमरन कुलदीप एकम दमन और अभिजोत गो करणवीर हाउस भुट्टो कैंचिया पंजाब शू कागज पुगेसा मलोट पंजाब शू राजकुमार इंदौरा विमला गैरी विकास प्रियंका रमन रितु इंदौरा भविष्य खन्ना मिशेल खन्ना किंशुक खन्ना एर बेपी दीपांशी इंदौरा देखो सा कागदिया भी शामिल कर लिया एर कई आप व्हाट्सअप का जी का संदेश है बे शामिल कर अब कोई मेल शामिल कर सा पर पहले थाने एक गीत सुनावा सुनो सा

आलियो सा। चंपा मेथी की आवाज़ में था ना गीत सुना दियो। अब यहाँ ना कियो के लोक कलाकार की आवाज़ में गीत कौन सुनायो। और देखो सा अब आप जी का अपना ताई मेल के रूप में संदेशा पुगेड़ा है बानना शामिल करा। देखो सा सगला शो पहला अपने ताई जी की मेल पुगती हुई है बापू की सा अपने देखो खुलती सी खुले हो। और देखो सा अपना जी का नियमित श्रोता है साधु शहर शो राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड। आज जी के पास मेल लिख भेजिए अरे एक बात मांड भेजिए बहुत फूट रही बात जरूर बांध सा क्या माया शू सब मिले कोठी कनक कतार पण हिवड़े रो हेतड़ो मिले न बीच बाजार जको उसने प्रेम एर घोरबंद शू मिले वो अपने बाजार में कोनी मिले। बिल्कुल साची बात है जिको मायड़ भाषा रो प्रेम है इसो प्रेम अपने कठे कोनी मिले। बिल्कुल साची बात है सारे वर्ड साहब बहुत फूट रही बात थे मांड भेजिए। अरे आगे लिखा कि अभी मारे इन जगह बिरखा हुई है जिके शू जिको नो तपागो भूत है वो तो भगवान उतार दियो। बिल्कुल साहब बंग आगे किंगो जोर है। एक और बात मांडिए कि बिरखा बरसी मोकलीर जागी हिवड़े में आस गाड़ा भरसी धानरा डांगर चढ़सी खास। बिल्कुल सा बिरखा हो जाने जब सह खातर जी का वो आराम हो जैसा। और देखो सा संदेश अपने तय पुख्त हुई है गांव चौधरी वास हरियाणा छू मांगित राम सतोड़ रितु सिंह हिमानी शुभम एर यश कुमार को लिखे भी इस कार्यक्रम जी को मैंने घणो चौखो लगे। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली छू तुलसी मस्किन वीना मस्किन आशीष राजा चंडीगढ़ छू राहुल खुराना रचिता खुराना रकेशू खुराना को भी जी का वो संदेश अपने तय मेल के रूप में पुख्त हुई रहा। वो देखो सा संदेश पुगे अपने ताई अपना ए भी नियमित श्रोता है चंडीगढ़ सिटी शू सतीश अनेजा विमला अनेजा ए भी बहुत चौखी बात मान भेजिए गर्मी पर सुनो सा क्या छाछ राबड़ी कांदो रोटी ई धरती रो खाज झोटा देवे नीम हवा तीजन रा कर्री अनाज पक्की निबोली लूल झाला दे नीम चढ़ी इठलावे मन चाले मोटियारा का जट्टावर गिटकू खावे रामबे गाय तो राबे गाय तुड़ावे बाछो छतरी ताणे मोर गटरगू चुगे कबूतर बिखरे दाणा मोर है जगर झोटा देर धिराणी बेल्या दे बिलो कोई खातर टाबर ठोली काढ़ खतेली जो गुड़ गुड़ करतो हुक्को घूमे घनी सुहाणी रातां एट सीधा साधा लोग मुलकता भोली भाली बातां। बिल्कुल साची बात है सा थारली बातां तो भोली को नहीं आ चौकी बात मान भेजिए एर शिव मंदिर हकीत पूरा मऊ शू मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा पीहू स्वर्णकार भी अपना तई संदेश पुगतो करियो सा। अगला संदेश पुग्यो सा देखो अपना तई ग्राम पिनोजिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश शू सत्येंद्र कुमार चंसोरिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया लिखे भी कार्यक्रम जी को मैंने घणो दाय आवे बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा।

बागपत उत्तर प्रदेश हूँ संजय ढींगिया नमन ढींगिया अपार ढींगिया अपने तई संदेश जुगा वो पुख्तो करियो सा वो देखो सा आगलो संदेश गाँव नाईवाड़ा जिला हनुमानगढ़ छूँ अपना नियमित श्रोता वेद मिड्डा अलका मिड्डा अपने तई पुख्तो करियो ए भी बात मांडी अब की बार भाई सगला ही चौकी चौकी बात मान रही भेजिए कह बने जद रू रू मैं बगावत बातरी बम्बूडी उठे गाँव गाँव गली गली में एक नूणो घमसाण मचे कवड़े कवड़े बागी बोल गड़कोठा बोले कागला हवा पानी में घुले जावे बगावतरा से बुलबुला प्रीत प्रीत रीत री गीत अवे कड़के नखान पड़ेला मथे बांध्या मोर मरे बे खोला पड़ेला कामनिया सहजा सिसकाई दानिया काग उदावे क्यों नुवी आजादी हेला मारे तू गले बिहे तड़भड़े क्यों के बात ऐसा बहुत लंबी चौड़ी बात मान रही भेजी है वो देखो सा संदेश पुगे अपने तई मदन बरोड मंजू बाल प्रीत बरोड दिव्या बरोड हितेश बरोड कामना बरोड लुभाड़ी बरोड आरती बरोड एर अजय पेंटर मुकेश पेंटर राजू पेंटर माऊ है बापू हनुमान बरोड इमरती देवी बरोड सगला परिवार का लोग मुकलावा बॉर्डर एरिया छू अपना तई रायसनगर छू संदेशों पुगतो करियो सा वो देखो सा संदेशों पुगे गाँव कलाना तहसील भादरा राजस्थान छू सुभाष छिम्पा एर विक्रम कड़वासरा और बाकी नाम तो जी कहे हाँ मांडिया को नहीं दो ही नाम मांड भेज दिया अबकी बार तो कोई बात को नहीं जावेद खां को संदेशों जी को वो अपने तई पुगतो है अंगसागे इमरान खां सीमा बानो विनोद खां मुखराम जी आरिफ खां इयान खान अरशद खां अरमान खां ढाणी लाल खां शू अपने तई संदेशों पुगतो करियो सा वो देखो सा संदेशों पुगे अपने तई सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल को जमानिया गाजीपुर यूपी शू दीवाना रेडियो लिसनर क्लब वो साथ देखो खान साहब एक और भेज दियो आ बात करते भाई वो देखो सा नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमांशु सुथार और बेटी सुचित्रा सुथार लिखा कुरुबंद कार्यक्रम जी को मैंने घणो चोखो लागे तावड़ो मंदो पड़ जा रहे गीत सुनाइयो बिल्कुल सा चाहे सीमा मिश्रा की आवाज़ में सुना दें चाहे ममता सिंह की आवाज़ में सुना दें गीत थाना जरूर सुना छा एर दौरा कनली धणी गाँव तापू छू बिश्ना राम बलियाण बिदामी देवी बरड़ सुनील बलियाण पूजा बलियाण सुरेश बलियाण सुभाष बलियाण एर श्याम सुंदर भाणु अपना तई संदेशों पुगतो करियो है वो देखो सा अगलो संदेश अपने तई पुगतो है गोविंदगढ़ माझीवाड़ा कर्णपुर छू राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला टुटेजा गुड्डू जिनू मनू शिवसेटी कर्णपुरी एर अंगसागे पाल मिस्त्री कर्णपुरी स्माइल टुटेजा एर पवन गुज्जर 34 एसटीजी पीड़ीबुंगा छू प्रेमी बिशन लाल मेहरा अमन समीर रितु मेहरा एर चाहलकला पंजाब छू अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंद्र कौर एर अंबा चाहल ए भी क्या भी कार्यक्रम जी को मैंने घणो चोखो लागे गीत भजन जी कहे दायावे लिखमिसर राइसनगर छू सोनलाल जांगीड मंजू जांगीड मनोज सुनील संजय जांगीड शिव प्रकाश साबराम स्वामी को संदेश जी को अपने तई पुगतो है कभी मायड़ बादशाह गोरबंद कार्यक्रम माने घणो चोखो लागे हर मंगलवार ने जी कह ये कार्यक्रम भी उड़ीक रवे बिल्कुल सा थारी भी माने घनी उड़ीक रवे सा चक 5 MD पथरोड़ा छू मंगल जनागल श्रीमती रोशनी जनागल अंकुर जनागल इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल को भी संदेशों अपने तई पुगतो है सा तो सा अब तने गीत सुना दें सुनो सा

वास्सा देखो तावड़ो मंदो पड़ जा रहे गीत था सुना दी और मंदो तो भई अब तो भगवान ही कर दियो कई जिया बिरखा भी कर दी पर थारा बेली सा थ्यांगो जरूरत थी ते कहो कभी गीत सुनाइयो तो बिल्कुल थान सुना दियो। यार अब देखो सा पुठा पा व्हाट्सएप वाला जी का संदेश साइड अब शामिल करा ओ देखो सा अपने तई संदेशों पुगतो हुए है मानसी गौरव अनिल कविता अरोड़ा गांधी मार्ग मोती नगर दिल्ली शू लिखे भी कार्यक्रम जी को मैंने घणो चोखा लगे अंग्रेजी में मार्ग भेजो है वो थोड़ा चोखे दूर हो जाए पढ़नो गाँव लोहगढ़ ठाकुर वाले शू स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह गिल राजदीप सिंह गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह और अविराज सिंह लिखे भी कोई भी गीत सुना दियो बिल्कुल सा लखवाड़ी हेड शू देखो मास्टर जी को संदेशो पुग्यो भंवरलाल कृष्णा सौरभ विशाल राजवाला लक्षिता नव्या ममता हरसंगरिया शू मुकनाराम महावीर लोरा लिखे भी कोई भी गीत सुना दियो बिल्कुल सा पटेनगर मलोट सिंह डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीतारणी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया बेबी आरजू जाजोरिया और गुड्डू को भी संदेश अपने तई पुगतो हो गयो सा एर ओ देखो सा करणवीर हाउस जी को अपने तई संदेश पुग्यो वो आप कागदी वागू शामिल कर लियो हनुमानगढ़ टाउन शू देखो सा सुल्तान सिंह तरड़ कृष्ण मुकेश रामचंद्र कपिल देव कांता चौधरी अपने तई संदेश पुगतो करियो है नई बस्ती गज डुडवारा शू मोहम्मद यासीन हाशमी नाजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तोशीफ हाशमी मोहम्मद तमुर राशमी और कलीम अंसारी को जी को वो संदेश अपने तई पुगत हुए बेहरवाड़ा खुर्द सिरसा शू बलवंत जाखड़ ममता जाखड़ प्रिया नैना जाखड़ हिमानी जाखड़ शिवम जाखड़ को भी संदेश पुग्यो लिखा भी कार्यक्रम माने घणो चोखो लागे गीत भजन जी कहे ताया वे बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा मेरठ कैंट शू दिग्दर्शन और कविता गोड को संदेश अपने तई पुगत हुए लिखा भी आज मंगलवार को दिन है कोई भी राजस्थानी हनुमान जी या बालाजी को भजन सुना दियो देखो साहब बिल्कुल भजन तो आप सुना दियो हनुमान जी को नहीं तो कोई बात को नहीं पर भजन थाने कार्यक्रम में शुरू में थाने सुनाई दियो और देखो सा हनुमानगढ़ टाउन शू अपना नियमित श्रोता रजाक मोहम्मद शमी बेगम इमरान खां इरफान खां संदेशो जी को वो पुग तो करिए लिखे कभी सीमा मिश्रे की आवाज़ में कोई गीत सुनाइयो बिल्कुल सा कार्यक्रम सुनो जरूर सुनाशा नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र शू पी एस नवालकर निर्मला नवालकर विशाल नवालकर सोपान ताइडे और मलकापुर शू नारायण इंगले राजकुमार खर्चे और आशीष मुहेरकर को भी संदेश जी को अपने तई पुगत हो गयो सा गाँव फरासी शू जिला हिसार शू राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी एंड सौरभ डूडी अपने तई संदेश पुगत हो करिए कि भाई सीमा मिश्रा की आवाज़ में गीत सुनाओ बिल्कुल सा अब तो सुनाना ही पड़सी क्योंकि भाई कई बेली साथी अपना क्या भाई सीमा मिश्रा की आवाज़ में गीत सुनाओ बिल्कुल सुना सा कार्यक्रम सुनो अलीका तहसील डब्वाली शू रूप सिंह लखोत्रा करमजीत लखोत्रा सरबजीत लखोत्रा और रानी एस सोनू रजनी आंगो भी संदेशों पुग्यो मलोट पंजाब शू कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल बलजीत गिल दिशा मोल्ला शू आपने तई संदेशों करिए कभी कोई भी जी को वो गीत मैंने सुना दियो बाबा कुटी रायगढ़ शू शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रितेश कुमार राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान को संदेशों अपने तई पुग्यो एर ओ देखो सा गाँव पैटना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ शू बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा मुरली खूबचंद वर्मा को भी संदेश अपने तई पुगत हो सा या कोई भी राजस्थानी गीत सुनाइयो बिल्कुल सा सिद्धार्थनगर दरियापुर वाबली शू गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले और यशोक येले को संदेश अपने तई पुगत हो संदेशों पुग्यो सा अपने तई ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही महराज जहांगो

चादनगर लक्सर हरिद्वार छूँ। लिख अभी शामिल जरूर करो सुनीता पूरा गोरबन सुना के। बिल्कुल सर, प्रणाम थे कोई मंडे को निकाली तो लियो भी शामिल जरूर करो। कोई बात को नहीं सर, कार्यक्रम थे सुनो। छत्रपति संभाजी नगर छूँ। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश को भी संदेशों अपने तय पुख्त हो गयो। बठिंडा रोड मंडी डब्वाले छूँ। राजेंद्र नारंग जी को संदेशों पुग्यो, रंग अपना कागज भी शामिल कर लियो। ज्योति नगर नोखा छूँ। पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्थन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी और हसन सिक्का को संदेशों अपने तय पुग्यो। के कालूराम प्रजापति आवाज़ में कोई गीत सुनाओ। बिल्कुल सा, कार्यक्रम तय सुनता रहो जरूर सुनाशा। आगे लिखे अपने तई संदेशों पुख्त करो है हितेंद्र दास आसाम छूँ। घनी दूर छूँ संदेशों अपने तय पुख्त करो कि कोई भी गीत जगह वो सुना दियो। अलिका डब्वाल छूँ। बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता, कुलदीप गांधी कोई भी गीत खतर के। मंडी डब्वाली छूँ। बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी ले ऊपर थली दौड़ दोनों बार बंसीज गो भाई। अब कई बेलेड़ा कह देसी तो दो बार बांस दियो के ठापड़े तो ऊपर थली आवाजत। नाभा जिला पटियाला पंजाब छूँ। सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत और मुन्नू अंगो भी संदेशों अपने तय पुगे। अनूपपुर छूँ। जुगल किशोर दलिया, मनोहरी देवी, मनोज दलिया, पूनम पिक, नव्या गंगा, सरस्वती, राजकुमार दलिया एक है कभी कार्यक्रम जी को माना करो चौखा लागे गीत भजन जी कहे पसंद आवे तो सा सगला कह भी सीमा मिश्रा की आवाज़ में गीत सुनाओ तो सुना दिया सा सुनो सा।

वाह, देखो सीमा मिश्रा की आवाज़ में भी थाने गीत सुना दियो। एर अब कई कागजी और शामिल कर लिया, नहीं सर अपना कई कागजी जिका बेली है बे जिका बे निराज हो जी। देखो सर गंगानगर शू वो कागज अपने ताई पुख्त हो सा, अपने बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा को। एर वो देखो सा गिदड़वा पंजाब शू मंजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल बेबी हनीशा, पदमपुर शू पवन तनेजा, योगेश तनेजा, पूजा तनेजा। मंडी गोलू वाला शू ब्रजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान को भी अपने तई कागज पुख्त हुए। एर सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ शू टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक।

विंगे समीक्षा जी के मारताई पुगती करता रहो। वो देखो सा आगलो जी को कागदियों अपने ताई पुगतो हुए है बहुत सा पुगियो अपने ताई रघुनाथपुरा छू लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित एर खुशी गोस्वामी कभी कोई भी जी को गीत जी को मैंने सुना दियो बिल्कुल सा कार्यक्रम थे सुनो एर सगला की पसंद का गीत अपना चले। कई बार क्यों है क्या कोई बेलीडे को गीत की पसंद शामिल हो जाए एर कई आगे को हो पावे ने जिगों पे क्या कह लें मार लो तो शामिल करिए को नहीं तो सर इसको कोई मकसद को नहीं हुआ क्या ना तो आप कि कोई नाम छोड़ना चाहो ना ही कि कोई गीत छोड़ना चाहो पर टेम अपने कहने इतो ही हुआ बिंग मैं सगला साथियों ने शामिल करने की कोशिश करा। वो देखो सा गाँव अरायण सिंह बनवारी लाल जयपाल विमला सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल लिखे कि अभी सुख में साथी घना मिले एर भीड़ पड़ता भाज जाए साथी सोई जानिए दुख में हाथ बटाए। बिल्कुल साची बात है सा कभी कार्यक्रम जी को मैंने चोखो लगा गीत भजन बढ़िया लगे। ओ देखो सा अब ईमेल वाले प्रोग्राम बंद इतनी बात मांड दी आपने राजा राम जी तो सा नाम तो मांडवार ईमेल वाला बंद को नहीं ईमेल भी आप शामिल करा और सागे कागजिया भी शामिल करा सागे व्हाट्सएप ग्रुप वाला भी शामिल करने की कोशिश करा। अमरपुरा जालू खाट छू जगदीश चंद्र प्रजापत विमला प्रजापत मोनू प्रजापत और राजेंद्र प्रजापत को भी संदेश अपने तय पुख्त हो संदेश पुगे सा अपने तई राशिद हुसैन अंसारी नसरीन अंसारी नोरीन अंसारी आसना अंसारी मोहम्मद कैफ अंसारी को लिखा भी कार्यक्रम जी को मैंने घणो दाय आवे गीत भजन चोखा लागे बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा। बाबूलाल खत्री सुगना देवी सुरेश आरती पूजा रमन रितिका रुद्रा संदीप अविनाश गहलोत एंड रजनी को भी संदेश अपने तई पुख्त हो गाँव को नाम सुरतगढ़ छू है सुरतगढ़ी मान लो वो देखो सा जी टी बी मार्केट अहमदगढ़ छू मंडी पंजाब मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफियाना और हिना सांखला जासमीन राजिया सुल्तान अख्तर अंसारी सूरज मोहम्मद जावेद अंसारी लिखे कोई भी जी को गीत सुनाती है बिल्कुल सा। वो देखो सा अलिका डब्बाड़ी छू आप पहले शामिल करियो रूप सिंह लखोत्रा जी थे संदेश करी दियो जो दूसर करने की जरूरत है। राम सिंह पुरुषों देखो साहब अशोक बबर पवन राजेश अजय राहुल एर मनु को संदेश आपने तय पुग्यो वाडीखेड़ा पंजाब शू मिंटू टॉमस पिंकी लवली एर आरती अरोड़ा का संदेश पुग्यो सा एर आदर्श नगर बलोट पंजाब शू राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा एर निवान शर्मा को संदेश पुग्यो सा। रामपुरा मोटोरिया शू मुरारी लाल अमन रमन तनीश सीताराम मदन लाल शर्मा एर चार पोता है पंकज कुमार हर्ष मनीष राजेश कुमार एर एक बडेरा ताऊ है फूसा राम मिल बे भी कार्यक्रम सुना है कार्यक्रम जी का बहुत चोखो लगा बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली छू रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा स्वीटी छाबड़ा लिखा कोई भी गीत मैंने सुना दियो बिल्कुल सा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया छू ओम प्रकाश राय श्रीमती ओषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुही दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर शुभ प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय प्रांजल राय को संदेश अपने तय पुग्यो सा। वरकट वकाल बुलढाड़ा शू नारायण हागे कमल हागे दिव्या हागे और जय हागे को संदेश अपने तय पुगतो यो सा। सांगली जिला शू अल्ताफ हुजरे सफुल्ला सबाहत किरत हुजरे और रेहान शेख को भी संदेश अपने तय पुग्यो सा। दादरी गेट भिवानी शू कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा को संदेश अपने तई पुगत हो सा। वो देखो सा अगलो संदेश अपने तई पुगत हो अपने गोवर्धन दास कृष्णा देवी योगेश कुमार मनीष माही केदार चित्रा बद्रा लिखा के भी मारी पसंद गो रामदेव जी को कोई भी राजस्थानी भजन सुना दियो सा। तो देखो सा भजन तो आप कार्यक्रम के शुरू में सुनाई दियो। वो देखो सा अपने गाँव जैसला फ्लो दिशू राजा राम विश्नोई गोरबंद कार्यक्रम में पेश करने मारकानी छूँ घनी घनी रामा श्यामा सा तो सा था नहीं घनी घनी रामा श्यामा ऊपर थे मांडियो के भाई मेल बा प्रोग्राम बंद हो गया तो साहब मेल का बंद को नहीं है विष्णु जी मेल का भी आप शामिल करा और सागे व्हाट्सएप वाला भी शामिल करा थे बहुत दिन बाद में अब की बार व्हाट्सएप करिए अब आगे भी व्हाट्सएप करता रहो मेल करता रहो एट कार्यक्रम सुनता रहो। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान शिव दादार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत को भी संदेश अपने तई पुगत हो गया सा सुना दिया सा सगला पसंद पर गीत सुनो।

0: संदेश पुगे सा अपना तई बन्ने पुजुर पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा को लिखा भी कार्यक्रम मानच खोला गया। प्रताप जी नागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया को संदेशो हरियाणा खारिया जिला सिरसा हरियाणा से पुगत हो सर। ओ देखो सर, सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या खुराना, आरव खुराना, मेघा, आशीष, अनुज छोटू, एस के पप्पी को संदेशन संदेशो MLB रोड ग्वालियर से पुगत हो सर।
1: घुंघटियों नेणारा बाण चलाऊं, मैं गज कामण केसर भरणी, मैं गज

विक्रम कड़वासरा, सतीश योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, कीड़ूराम जोईया, हनुमान सारण, सुनील पाईवाल, गांव कलाना, तहसील बादरा, हनुमानगढ़ शू।

रबे तेरे बेली विकास भाई ने ई बात के सके सीख दिलाओ सा के तरवर कदे न फल बके है नदी न सचे नीर परमार्थ रे कारण साधु धरियो शरीर। राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोरबंध। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आपनों राजस्थान।

0: राजस्थान में अरावली की सुरम्य वादियों में बसा अलवर जिला अपने समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक किलों के लिए राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। महाभारत कालीन मत्स्य देश के रूप में प्रसिद्ध यह शहर अपनी अनूठी विरासत, कला और बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान में अलवर अंचल की विशिष्ट परंपरा रही है। अलवर न केवल शासकों की, विद्वानों की, अपितु पौराणिक ऋषियों की भी तपोभूमि रहा है। वैदिक ऋषियों मांडव्य, पाराशर, अंगिरा, लोमश इत्यादि ऋषियों के मंत्रों से अनुगुंजित यह भूमि सदैव देववाणी की पोषक रही है। अलवर क्षेत्र का लोक संगीत यहाँ की समृद्ध संस्कृति का मुख्य आधार है। यह संगीत स्थानीय इतिहास, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता को जीवंत रखता है। लोक संगीत व वाद्य यंत्रों का यह संगम स्थानीय त्योहारों में एक नई उमंग भरता है। अलवर की थानागाजी तहसील के आसपास नेहरा गीत, जिन्हें स्थानीय भाषा में नवेदा, नेहरा, नेड़ा भी कहा जाता है, ये गीत विशेष रूप से गुर्जर, मीणा और अन्य ग्रामीण समुदायों में गाए जाते हैं। थानागाजी के क्षेत्रीय लोकगीतों में नेहरा का एक प्रमुख स्थान है। ये मुख्य रूप से रसिया, ढफ या दंगल की श्रेणी में गाए जाते हैं। इनमें स्थानीय वीर गाथाएं और स्थानीय लोक कथाओं का वर्णन होता है। आइए सुनते हैं धवले राम मीणा और साथियों के द्वारा गाया गया ये शबरी प्रसंग।
1: सबर भूप के धाम जन्म सबरी ने लियो और बालापन से लगन ध्यान भक्ति में दियो। राजा सुनो बोली रानी सबरी होती आई सियाणी। आचो ठोर ठिकानो हेरा कर दे भाव पाड़ दे फेरा। खबर ये सबरी ने सुन पाई भाजी मैया के ढंग आई। मैया मैं समझाऊं तो कु चाहिए नहीं सास रो मोकू। ये सासु ससुर पति पिता मात सब स्वार्थ को संसार और सत्य भजन भगवान को जैसे बेड़ा हो जाए पार। के बैठी बैठी फेरूंगी अरे बैठी बैठी फेरूंगी बनी में माला हर की भगत।

ती घणी वाक बाबुल मैन्यो नाही और करी सगाई तुरत ही देख ब्याव दी और पुवाए शादी केंद्र अपने बंदोबस्त करवाए पीने के हित मदरा के घड़ा भराए भोजन के लिए भैंसा बकरा मंगवाए मृग सुअर स्यार खरगोश बहुत बंदवाए सबरी बोली सुन महतारी मोकू बात बता दे सारी मारे घर के पछवाड़े में कैसे बंदे पशु बाड़े में सुनकर के सबरी की बाणी नो समझावे लागी रानी ये बाड़े के बने पिरानी इनकी दो दिन की जिंदगानी तेरो भ्याव करेंगा स्याणी और इनकी बने रसोई वादन मर जावे ये प्राणी सबरी बोली सुन महतारी सबरी बोली सुन के बानी बाबुल क्यों बन रहे अज्ञानी मैंने मन

नहीं मानी और मेरे पीछे मैया बैठा मरे सैकड़ों प्राणी। ऐसो भाव मोय ना चाहिए ऐसे मेहतारी से खइए। मैंने तजे तजो कुटम परिवार त्याग दिए बाप और भैया।

को ले लिए पंत रटे भगवंत हेत रघुबर से नहीं होय गुरु बिन ज्ञान सोच रही मन में कोई संत बनानो चाहिए गुरु विपन में संतन ढंग सबरी घूमत फिरे अकेली कर जोर कहे महाराज बना लो चेली भीलनी अपनी जात बतावे जब संतन को गुस्सा आवे तू दिन उठ के पाप कमावे तो कुचेली कौन बनावे साची खेपुन ने भेकाई मारी धूनी पे क्यों आई जाने तू कहना कि नहीं तो कुतनक शर्म नहीं आई कुटिया पैसु पहना बन जा और अशुभ भेष खुल रहे केस तू न्यासु लंबी पड़ जा वाकी भारी करी पिटाई और मार पीट करके संतन ने सबरी दूर भगाई ठाडी ठाडी सोचे मन में मेरा कौन धनी या बन में मैं घर को उल्टी नहीं जाऊं ये संतन को किसा मनाऊं हे रघुबीर आसरो तेरा बेड़ा पार लगा दे मेरो मिल तजे जगत के भोग सटाटे धरो तुम्हारो ध्यान और सबरी को बना दे।

0: थानागाजी के इलाकों में नौदा दंगल बहुत प्रसिद्ध है। इनमें दो अलग अलग मंडलियां या गायक आमने सामने बैठकर सवाल जवाब की शैली में इन गीतों की जुगलबंदी करते हैं। नौदा के अलावा थानागाजी क्षेत्र में विवाह के गीत जैसे बन्ना बन्नी, बिंदोला, बधावा और सावन भादो में मल्हार जैसे हिचकी, लांगुरिया, पणिहारी और ऐसे ही बहुत से गीत गाए जाते हैं। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं माता दीन और साथियों द्वारा गाया गया ये लोकगीत।
1: हे हे हे मनोभर मतवाला की जय।

लोक गीतों की कड़ी में अब बारी आती है मीणावाटी गीतों की। ये गीत अलवर, थानागाजी, नारायणपुर के आसपास के इलाकों में बहुत प्रिय है, जो स्थानीय बोलियों में गाए जाते हैं। मीणावाटी गीत यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है। ये गीत मुख्य रूप से प्रेम, भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गाथाओं पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं ग्राम बाछड़ी, तहसील थानागाजी की महिलाओं द्वारा

मेणावाटी लोकगीतों में प्रमुख रूप से गाए जाने वाले गीत हैं टेर या रसिया गीत। ऊंची आवाज में गाए जाने वाले इन गीतों का उपयोग मुख्य रूप से संदेश भेजने या देवी देवताओं को रिझाने के लिए किया जाता है। अगले आते हैं पढ़वाड़ा गीत, जो कि अलवर क्षेत्र के मीणा समुदाय में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कथात्मक गीत होते हैं जो स्थानीय इतिहास, वीरों की गाथाओं और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित हैं। मीणावाटी गीतों में ही अपनी एक अलग पहचान रखते हैं हास्य और व्यंग गीत। इन क्षेत्रों में सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर आधारित हास्य व व्यंग गीत भी काफी पसंद किए जाते हैं। और इसी कड़ी में आते हैं हीला ख्याल, जो कि मीणा समाज का सबसे प्राचीन और पारंपरिक लोकगीत है। इसे यहाँ के लोग बड़ी ऊंची और लंबी आवाज में गाते हैं ताकि दूर दूर तक बैठे लोगों तक यह पहुँच सके। राजस्थान में रामजीलाल मीणा और कानाराम थली जैसे कलाकारों ने मीणावाटी गीतों को काफी लोकप्रिय बनाया। इन गीतों के माध्यम से मीणा समाज के गौरवशाली इतिहास और पूर्वजों की गाथाओं का बखान किया जाता है। चले सुनते हैं एक और खूबसूरत सा मीणावाटी लोकगीत।

0: बात हो अलवर के प्रसिद्ध लोकगीतों की, तो राठ क्षेत्र के लोकगीतों को कैसे भुलाया जा सकता है। अलवर के राठ क्षेत्र बहरोड़, मुंडावर, किशनगढ़ बास, कोट कासिम के उत्तरी भाग में मुख्य रूप से अहीरवाटी और मेवाती लोकगीतों की परंपरा है। यहाँ के प्रमुख गीत स्थानीय मेलों और त्योहारों में बहुत उत्साह के साथ गाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोक नाट्यों और मेलों में अलीबख्श ख्याल और महाभारत से जुड़े प्रसंग, ढोला मारू और राजा भर्तरी के गीत भी गाए जाते हैं। चलिए सुनते हैं राठ क्षेत्र का यह प्रसिद्ध लोकगीत जिसे गाया है मनु श्रवण और साथियों ने।
1: छोड़ दे कोड़ी इस योद्धा की,

0: इस क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत और संगीत परंपराओं में बारी आती है सबसे पहले अली बख्श ख्याल की, जिसे कि अलवर का रम्मत भी कहा जाता है। मुंडावर के नवाब अली बख्श द्वारा शुरू की गई यह संगीत शैली में ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो सामाजिक जीवन मूल्यों को दर्शाती हैं, जो राठी अहिरवाटी बोली में गाए जाते हैं। आइए सुनते हैं दुर्गा प्रसाद शर्मा और साथियों का सुंदर गाया ये गीत।
1: सो राठी गड़ी से।

अहिरवाटी लोकगीत मुख्य रूप से अहिरवाल यादव क्षेत्र में गाए जाते हैं। इन गीतों में यहाँ की संस्कृति, वीरता और लोक कथाओं का चित्रण होता है। ये गीत मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति और वीर रस पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं यहाँ मदन लाल यादव और साथियों द्वारा गाया यह लोकगीत।

0: समय का चक्कर चढ़ासी सुपा गुरु गोरख जी डांटा था ये उस मौसी के दर्शन खातर कद पूरन मलनाट्या था
1: उस मौसी के दर्शन खातर कद पूरन मलनाट्या था
0: ये धन माया का भरा खजाना ना धन का घाटा था ये साल पोट में

0: समय के कारण हरिश्चंद्र ने सत भंडार भरे थे। यार एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं फिरे थे।
1: अरे एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं गिरे थे।
0: यार लड़का राजा रानी तीनों घर के बाहर करे थे। यार राजपाट सब खोस लिया बाकी सो बाहर करे थे।
1: राजपाट सब खोस लिया बाकी सो बाहर करे थे।
0: भाई समय के कारण हरिश्चंद्र ने समय के कारण हरिश्चंद्र ने भरे भंगी के

श्रोताओं, अलवर की संस्कृति में कुछ क्षेत्रों में ब्रज संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ब्रज लोक संस्कृति से जुड़ा एक लोक भजन हम सुनते हैं, जिसके कलाकार हैं नरसी शर्मा और उनके साथी।

बात करें परंपराओं की तो रसिया और बन्ना बन्नी को कैसे भूला जा सकता है। त्योहारों के अवसर पर रसिया गाए जाते हैं जो ब्रज संस्कृति के प्रभाव को दिखाते हैं। चलिए सुनते हैं मामन चंद गौड़ और साथियों की ये मनमोहक प्रस्तुति।

0: अलवर के लोक गीतों की श्रृंखला में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं मेवाती क्षेत्र के लोकगीत। और बात करें यदि यहाँ के लोक गीतों की, तो पहला नाम आता है रतबई गीतों का, जो कि मेवात क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। इसे प्राय वर्षा ऋतु या शाम के समय भपंग वाद्य यंत्र की संगत में गाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रेम प्रसंग और स्थानीय वीर गाथाओं का वर्णन होता है। मेवाती लोकगीतों की आत्मा यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। इनमें भपंग और सारंगी सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें मेवात के जोगी बजाने में सिद्ध हस्त होते हैं। इसके अलावा नगाड़ा, खरताल और ढोलक का भी इस्तेमाल होता है। आइए सुनते हैं हम उमर फारूक मेवाती और साथियों के द्वारा गाया गया ये मेवाती लोकगीत।
1: अरा भबूड़ा में अराई हुआ थी दादा।

0: और घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चपटी,
1: घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चपटी,
0: और घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चपटी,
1: घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चपटी।

0: इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब आपको हम सुनवा रहे हैं गफरुद्दीन मेवाती और साथियों द्वारा गाया गया मेवाती लोकगीत।
1: मेरो नथ को मुवती चमक रहो रे दिल जानी, मेरो नथ को मुवती।

मेवाती लोक संस्कृति में लोक गाथा एवं किस्सों का भी प्रमुख स्थान है, जिसे शामिल किए बिना लोक गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम अधूरा है। आइए सुनते हैं नूर मोहम्मद मिरासी व साथियों द्वारा गाया लोक गाथा पंडुवन का कड़ा की ये प्रस्तुति। यह मेवात का सबसे प्रसिद्ध लोक महाकाव्य है। प्रसिद्ध शायर साधु अल्लाह द्वारा रचित इस गाथा में महाभारत के पांडवों की कथाओं का मेवाती लोक शैली में वर्णन किया गया है, जिसे स्थानीय जोगी और मिरासी सारंगी की धुन पर गाते हैं।

भाई नी पी पिया लाके जाने कही के ले भाई राजा दंडा टपना लेके राजा अर्जुन ने पी थिया को कहां चलता हो जाता जेत खम पे जाकर याने जेत खम के पे जिंदो गच का दियो ओ रे अब चलो कहां सहदेव के पास में याने कही रे राजा सहदेव हां देख भाई तेने नू कही निपी थिया लार गच का दियो तेने नू कही कि जग जो नार दियो जग जो नार दे दी अगर कोई बाकी हेरी हुए वाय और बता दे राजा।

ने कहा बताऊं भेद बतावे भेद देखन दियो और या ने भेद खोलो भेद खोल के और या ने राजा जन बुलायो राजा जन हाँ अभी तो बहुत कसरे राजा जन बोलो के भाई तू कसरे मेट ले और कुछ हो जाए बता दे भर भर की रामायण मत राखे जो कुछ बात हो जाए तू एकदम बता दे राजा से देव भेद देख के क्या राजा जनजोत को बताता है क्या कहता है

रहा है राजा सहदेव? कौन से राजा अर्जुन से? राजा अर्जुन, मैं तो या वेद की बात बताऊं, अर्जुन जब जग पूरी हुए लोकनी चले जावे, से हित बली शिकार मार के वाकु डावे, और आगे नागर मसान हे वा समतल ना कुवई, इमरत आवे लोक पताल सू अर्जुन तेरी जब जग पूरी हुई। ओ भाई राजा अर्जुन, मैं आपको बात बताऊं, ये वेद की बात है, शहद बलि की शिकार पाताल लोक सु आएगी वासु।

नहीं जाऊं कोई सा और ले जाऊं। सहदेव बोलो के यार एक सू दो भला कोई सा और ले जा। तो जान ना कौन राजा जिन भीम के सामने क्या एक दोहा को पेश कर तो है क्या कहते तो है।

सब रोटी रहा में इन सुबह ना रुके कि भाई तू ही चल नाट गो के मैं ना चलू यार भूख को पिसाए परेशान रहू के ना भाई तू ही चल तीसरा

तो बकार भीम और राजा अर्जुन दोनों का दोनों कहां चलते हो जाते हैं पाताल लोक। आगे आगे राजा अर्जुन, पीछे पीछे भीम, और ये पाताल लोक में पहुंचा। भीम की नजर पड़ जावे, देखे तो गेंडान की डार आ रही है। ये बोले रे राजा अर्जुन कहां जा रहे हो तू, क्या गेंडान की शिकार लाएंगे कही कहा। ओरे के यार गेंडा ये तो है कि भाई मैं तो जानू भी ना कि ना, मैंने पहले भी देख रखा है भाई ये। कहते यार अब देर कहां है, जल्दी हो जाएगी। कि सही बात है, तो कहते अब तू इतना काम कर ले कितना, कौन कहते भीम कौन से राजा, क्या बात होती है।

0: श्रोताओं, अलवर के लोकगीत यहाँ की मिश्रित संस्कृति, प्रेम भक्ति और प्राकृतिक परिवेश को दर्शाते हैं। ये लोकगीत और लोक गाथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि स्थानीय जीवन शैली, आदर्शों और पीढ़ियों की मौखिक परंपरा के दस्तावेज हैं। अलवर के लोकगीत क्षेत्रीय पहचान और लोक जीवन का दर्पण है। ये गीत न केवल ऐतिहासिक चरित्रों और कथाओं को जीवंत रखे हुए हैं, बल्कि अलवर की पहचान को संगीत और मौखिक परंपरा के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अनूठी छाप देते हैं। आशा है कि आज का हमारा यह लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में वाचन स्वर के साथ आपकी हम सफर रही मैं अर्चना जैन। आलेख था डॉक्टर भीम सिंह जाट का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री शिव कुमार शर्मा एवं श्री नीरज भगत।
1: आपनो राजस्थान। अभी आप सुन रहे थे अलवर के लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम। अंशदान आकाशवाणी अलवर का था और इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।

ज़रा सी आपकी नादानी कहीं ख़त्म न कर दे जिंदगानी, यातायात नियम अपनाओ, अपना सफ़र सुरक्षित बनाओ।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आम ही चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: हाँ, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.

आकाशवाणी के गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:52 पर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।